नमस्कार, एफएम इंडेक्स 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2036। इस समय दिन के 11:58

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, FM 101.8 MHz पर। दोपहर के 12 बज चुके हैं, आइए आरंभ करते हैं आज की पहली प्रसारण सभा।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

डाला छाती पे आए चमक चांदनी होठों पे तेरे गीतों की माला सांसों में तेरी खुली रागिनी बैंड बजाऊंगा झूमके गाऊंगा प्यार तेरा होगा बारात सजेगी सजनी सजन होंगे।

उदित नारायण की प्यारी सी आवाज को आप सुन रहे थे दिल वाले फिल्म से। उदित नारायण और अलका याग्निक, इन दो आवाजों के बताइए, अब सुनते हैं दिल लगी फिल्म से इस गीत को।

छलके छलके नदी महका महका चमन तुमसे है ताजगी।

कुमार सानू और साधना सरगम इन दो गजलों को अभ्यास कर रहे थे दीवानगी फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। दोपहर के 12:30 पर है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: सी आई ई टी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोठिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ, आज की, कल की, एक एक पल की। ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थी
2: जी।
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी अजी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं
2: जी।
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
3: श्रोता, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोता, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।

0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत डॉक्टर सुचिता। हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: हाँ हाँ, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
4: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
4: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
5: सॉइल इरोजन,
4: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
4: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
5: हाँ, जी मैम। यस मैम।
4: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
4: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
4: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
4: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
4: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह।
4: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
2: जी,
4: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
5: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
5: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यही समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
5: धन्यवाद सर।
7: धन्यवाद मैम।
1: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है। जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।

0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीष शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
1: जंगल के साथी।
3: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
4: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक

0: हिरन भाई एक हिरन क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं।

मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना? क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
3: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
3: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
3: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
3: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
3: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
3: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम दत्ता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM 101.8 MHz पर। दोपहर के 1 बजे है। थोड़ी देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ।

0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस चार दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में वस्त्र, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। ये निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, कारीगरों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक मंच पर लाएगा। इस आयोजन में 7,000 से अधिक खरीदारों और 20,000 से अधिक वस्त्र उत्पादों की भागीदारी रहेगी। साथ ही इसमें 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटपूतली बहरोड जिले के पावटा दौरे पर रहेंगे। वे प्रागपुरा नगर पालिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए आज जयपुर में राज्य स्तरीय वेबिनार आयोजित की जा रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हो रहा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस वेबिनार में प्रदेश के करीब 550 पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधान शामिल हो रहे हैं। वेबिनार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यालयों में नवाचार, सह शैक्षणिक गतिविधियों और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से उपलब्ध कराए जा रहे फंड के प्रभावी उपयोग पर भी चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। राजस्थानी लोक संगीत और संस्कृति को नई पहचान दिलाने वाले और राजस्थान रत्न से सम्मानित केसरी चंद मालू का कल देर रात निधन हो गया। उन्होंने राज्य की समृद्ध लोक परंपराओं, गीत संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में विशेष योगदान दिया था। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बागड़े ने कहा कि उनका निधन राजस्थान की लोक संस्कृति और संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने शोक संदेश में कहा कि लोक संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने शोकाकुल परिजनों और उनके शुभचिंतकों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति देने की कामना की। झुंझुनू जिले में किसान अब कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली बागवानी और ड्रिप सिंचाई तकनीक अपना रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान का प्रभाव जिले में दिखाई देने लगा है। केसरीपुरा गांव के प्रगतिशील किसान ने ड्रिप सिंचाई के माध्यम से करीब 90 से 100 बीघा क्षेत्र में बेर, किन्नू, मौसमी आम, बेल और चीकू का बगीचा विकसित किया है। उनका कहना है कि इस तकनीक से पानी की बचत होती है, लागत घटती है और उत्पादन बढ़ता है। उनका परिवार सालाना करीब 50 लाख रुपए का कृषि कारोबार कर रहा है। नीट यूजी पुनः परीक्षा 2026 के अभ्यर्थी रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट पर अपनी आपत्तियां कल सुबह 11 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। एनटीए ने कल ये शीट जारी की थी। अभ्यर्थी प्रति प्रश्न 200 रुपए का शुल्क देकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन के बाद 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा कर रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करनी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की लोकेशन के लिए केवल गूगल मैप पर निर्भर नहीं रहने की सलाह दी है। आयोग ने कहा है कि तकनीकी कारणों से कुछ परीक्षा केंद्रों की लोकेशन गूगल मैप पर स्पष्ट नहीं हो सकती, इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा के दिन से पहले ही ई प्रवेश पत्र में दिए गए पते के अनुसार परीक्षा केंद्र का भौतिक सत्यापन कर लें। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM 101.8 MHz पर। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम परिहारी।

आजादी में कोई बंधन को नहीं हुए, उल्टे अपन कह सको नहीं आजाद फ्री हो जाओ इरा, क्योंकि अगर अपन घर में ना माता पिता है तो अपन यो को नहीं लागे कि अपर लारे घर नो कौन संभाल से। अपर अगर बच्चा घर में ना है तो उंवरी भी एक तरीके से सुरक्षा रे वास्ते वो है कि अपन लगे हाँ वो बैठा है। तो ये चीज अपन सोचनी चाहिए, विचारनी चाहिए कि अपन जो संयुक्त तो परिवार ना क्यों नहीं कि ना ये तो बंधन बंद जा सर वो बिल्कुल को नहीं हुए, क्योंकि संयुक्त तो परिवार में ना कोई भी अगर परिवार के सदस्य के साथ में कोई समस्या है नहीं तो वे रो भी छुटकारो जल्दी मिल जावे रो, क्योंकि सब जना वो सहयोग करके और अगर वो समस्या है तो वो रो निवारण भी करे साथ में। सहयोग री भावना हुई नहीं तो अगर रो काम काज है तो चार जना मिलके काम भी जल्दी निपटा दे। तो संयुक्त परिवार जितना लाभ है नहीं वो तो है कोई हानि को नहीं, बढ़िया है संयुक्त परिवार मेरे वो। तो अपर जो को बच्चा है वो संस्कार सीख से रीति रिवाजों से वाकिफ हो से, पर जो को संस्कृति है पुरानी सभ्यता संस्कृति है वे तो वो रूबरू कराओ, क्योंकि आजकल अपन देखा ही नहीं कि बच्चा मोबाइल टीवी के अलावा उन्होंने कोई मतलब को नहीं, जिंदगी केवल वो तक सिमट गई है, उन्होंने कोई भी जो बाहरी ज्ञान को नहीं। तो जब ज्ञान को नहीं हुए तो बच्चों आगे बढ़ सक अगर आप रो विकास को कर सकते ये वास्ते अपन ये चाहिए कि अपन एक भरे पूरे परिवार में रहो नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़िया रह सक। बीजी बात करो कि अपर लोकगीत लोक गायन शैली अपन वेरी बात करो तो हणा लोक कलाकार और लोकगीतों ने अपन लगभग भुलाए चुके हो, लेकिन अपर ये सभ्यता और संस्कृति में ना लोकगीत और ये जितनी महत्ता है उतनी हणा को नहीं। अपन यहाँ लगे नहीं हाँ बार अपन देखो नहीं कंप्यूटर माथे या सोशल मीडिया माथे फालतू गीत आवता रहे से उन्होंने बच्चा बड़े शौक से सुने, यो कौन सोचे कि जो मोहरी पुरानी लोक कला है लोक गीत है लोक गायन शैली है उन्हें सुनो तो सही एक बार। अपर मारवाड़ी गीत कितना बढ़िया है और जो इधर लोगों द्वारा जो अपर स्थानीय कलाकारों द्वारा जो गीत गाया गया है वो कितना बढ़िया है। वो हर गीत रे पीछे वो कुछ न कुछ वजह होया करे, जैसे अगर अपन लोक गीत कोई ब्यावरा गीत है तो वो सुनो वो में ना अलग तरीके रोस है, अगर अपनी फसल कट के आ रही है तो उसी टाइम जो गीत गाई गई वो अलग गीत हुई। तो कहने का मतलब यही है कि जो अपनी पुरानी लोक कला शैली है लोक गायन शैली है वो ना एक बार वापस सु अगर अपन सुनो और वो ना समझने की कोशिश करो नहीं तो जो स्थानीय कलाकार है वो ना भी आगे बढ़ने वास्ते एक स्टेज मिल से। तो ये वास्ते अपन जरूरी है कि अपन लोग कला जुगा पर गायन चलिए उन्हें फिर सुनो। साथ में ना बीजी बात करो कि अपन जो पुराने टाइम में ना अपन कहानियां सुनता अपन बुजुर्ग सुनो अपन दादी नानी से कहानियां सुनता वो हणो देख लो कि एक भी नजर को नहीं आवे, क्योंकि सोशल मीडिया आपने माथे इतना हावी कर दियो अपनो कि कुछ के भी को नहीं सको, जो भी है सब वे मोबाइल स्क्रीन में ना सब कुछ आया जावे। लेकिन ऐ चीज देखो नहीं जो अपो अपरे दादी नानी सु अपो जो कहानियां सुनता वो अलग ही चुगरो मजो अलग हो, तो चार पांच भाई बहन भेड़ा होए और बड़े चाव से सुनता कहानी कि आगे की होयो पछ की होने वालो है कितनी जिज्ञासा रही होती। ऐ चीज आजकल बच्चों में है कौन। बीजो पर बात करो कि अपरा पुराना जो खेल था परंपरागत खेल था वो सु खेलन सु अपर जो शरीर में ना ऊर्जा बनी ओड़ी रहती जो शरीर में ना ताकत हती शरीर मजबूत हतो, भले ही अपन थकोड़ा था लेकिन शरीर अपर मजबूत हतो। लेकिन आज आज रे टाइम में ना देख लो कोई भी तरीके रो खेल खेलनो बच्चा पसंद ही कौन करे, दिन भर बैठा रह से स्कूल गया स्कूल से पाछा आया काम कियो स्कूल रो खानो वगैरह खायो थोड़ी देर सोया भले ट्यूशन गया तो वो दिनचर्या एड़ी बनाए दी हो तो उन्होंने खेलन रो समय को नहीं मिले, और अगर मान लो समय मिल भी जावे तो वो की करे आप रो टाइम मोबाइल स्क्रीन में बिताए देवी और बैठा बैठा रह दे। तो ये सुखी हुई कि वो शरीर है वो जाम हो तो जावे मोटापो हुआ आस पास घूम रहे हुए। और बात करन तो हम देख लो कि आप हर 10 बच्चों में ना देख लो 8 बच्चा मोटापे से ग्रस्त है, कारण

0: मजबूत रहे तो, स्वस्थ भी रहे तो, अपन कोई बीमारी आए घेर भी को नहीं लेते। तो चीजा वही है, लेकिन उन्होंने पाछे अपना वरना अपन पहल करनी पड़ते और आगे बढ़ना पड़ते, अपने बच्चों ने सिखाणो पड़ते। ये वास्ते पहल तो भाई अपन कर देनी पड़ते। मैं ना बातें तो खूब हो गई है, तो हमें समय हो रहे एक जरूरी संदेश रो और पछे सुनसो बढ़िया जेड़ो लोकगीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: तो बहना हना आप सुनियो बढ़िया जुड़ो लोक गीत। देखो लोक गीत सुनो ही नहीं तो एक मन में ना अलग ही उल्लास उमंग भर जावे। और जो को आप दिन भर काम करो ही नहीं ये थकावट है नहीं वो भी दूर हो जावे। तो जद बहनों आप बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि आप जो को पुराने रीति रिवाज जो पुरानी परंपराओं होती आप होना धीरे धीरे भूलता जा रहे हो और यो नहीं वह कि यह जो अपनी परंपराओं रीति रिवाज है लुप्त नहीं हो रहा वो ना संजोए रखना अपने हाथ में है। देखो नहीं पहले जब भी आप भोजन करता तो नीचे बैठ के करता हमेशा खानो पालकी मार और नीचे बैठ भोजन करता तो उवे सू की हो तो कि अपर जो को शरीर है वो भोजन जो को करतो नहीं ग्रहण करतो तो वह ना पचावन भी क्षमता अपने आप आ जाती। लेकिन आजकल नीचे बैठने भूल गया हो नीचे बैठता तो अपने जोड़ों में दर्द को नहीं हो तो लेकिन धीरे धीरे हमें देखो जोड़ों में दर्द शुरू हो नीचे बैठनो जमीन माथे बैठ भोजन करनो सब तू अपने शरीर वास्ते बहुत बढ़िया आ गई। दीजो बात करो कि अब पहले देखो ना अपने घरों में ना कोई बड़ा बुजुर्ग आता या आप कह रहे घरे जाता तो वो बड़ो आप पग छूता वो ना प्रणाम करता नमस्कार करता। लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसी चीज़ें भी अपन बहुत कम देखने मिले कारण कि आप बड़ा आधुनिक हो गया अपन लगे कि अगर आप कह रहे पगो न छूसो तो अपन हाथ खराब हो जाते एक मान्यता इतनी गंदी आजकल लोगों की सोच हो गई है बहुत खराब है। झुक के प्रणाम करनो और वो रपाओ छूना वो सामले न पाओ कितो आदर दे रहे हो कितो सम्मान दे रहे हो तो सामले रे मन में आप आशय कि वास्तव में कितना संस्कारी लोग है जो संस्कार नहीं है धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। बीजो बात करो कि अपर जो गाँव में ना या हाथ से बने वाला जो चीज़ें होते हैं नी बर्तन मिट्टी या बर्तन वो आजकल अपन बहुत कम देखने मिले वहीं मिट्टी रे बर्तनों में ना भोजन बन तो मिट्टी रे जो मटको हो तो वो मीनू पानी रे तो लेकिन आज वो मिट्टी रे मटके की जगह अपन फ्रिज आ गए बर्तन जगह मिट्टी रे जो बर्तन होता मिट्टी की परात होती दही जमाने वास्ते मिट्टी रो पात्र हो तो खाणो बनाने वास्ते होंडियाँ होते लेकिन हमें वो सब धीरे धीरे हट रहा है। स्टील रा बर्तन आ गया है या एल्यूमिनियम रा बर्तन कह सको और आजकल तो देखो टेफलॉन कोटिंग वाला बर्तन आया जिसके असू और जो टेफलॉन थोड़ो धीरे धीरे अगर हटे ही नहीं तो सब अपर शरीर में भोजन द्वारा अपर शरीर में जावे और अपर शरीर में कितो नुकसान दे। लेकिन जब मिट्टी रे पात्रों में जो भोजन बनतो नहीं वो अपर शरीर में कोई नुकसान को करते मिट्टी रे मटके में ही ना अगर पानी भी रेवे ही नहीं तो इतो बढ़िया रहे अपर शरीर वास्ते कोई नुकसान दे को नहीं हुए कदे भी अपन मिट्टी रूप अगर आप मटके रो पानी पियो तो कदे जुखाम खांसी रो नाम ही को नहीं हुए और पानी उतो शीतल हुई कि जिगरी कोई होड़ भी को नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप देखो कि आप रसोई में सुबह जो मिट्टी का पात्र रहता नहीं वो धीरे धीरे हट रहा है। लेकिन वही सुखी हुई कि जो कुम्हार रहता जो मिट्टी का घड़ा बनाता मिट्टी का जो चीजों बनाता वही सु उमरों व्यवसाय है वो धीरे धीरे ठप हो रहे हुए तो उमरी आजीविका रो साधन खत्म नहीं हुए वो जो पुराना जो परंपरागत उम्र उद्योग है वो खत्म नहीं हुए तो ईर वास्ते अपन पहल करनी पड़ से कि आप पाछे सू यो बर्तनों नो उपयोग में लाऊं और देखो ये बर्तनों उपयोग में लाता नहीं तो शरीर वापर जो स्वास्थ्य है ऊर वास्ते भी बढ़िया रहते साथ ही साथ जिके कुम्हार वो चीज बनाई है तो वे भी आजीविका रो साधन है वो खत्म को नहीं है। तो दो काम हो जाते एक पंथ दो काज वो बात हो जाते। बीजो बात करो कि आजकल आधुनिकीकरण के कारण देखो धीरे धीरे गाँव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं तो ये सुखी है शहरों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और दायरों बढ़ रहे हुए और गांव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये कारण जो ग्रामीण संस्कृति और उमरी जो जीवन शैली होती नहीं वो और उमरा प्राकृतिक संसाधन वो सिमटता जा रहा है यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप भी देखो कि आप और जैसलमेर पहले एक परकोट है मैंने समायड़ो हो तो लेकिन हणो चारों तरफ कॉलोनियाँ बन गया है दूर दूर जो गाँव होता अपने यहाँ लगता वो तो जो आगो घणो है अमर सागर मूल सागर अपने यहाँ लगता ना जन बहुत आगा गाँव है लेकिन हणो अना तो पनिया लागी जाने पर शहर रे कन्नी जे कोई आगू गांव कोनी। तो बढ़तो शहरीकरण के कारण जो गांव है वो धीरे धीरे सिमट रहा है, लोग जो ग्रामीण लोग है वो धीरे धीरे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और अपनी ग्रामीण संस्कृति न छोड़ रहे हैं। ये सुखी है शहरों की सीमा ने लगातार बढ़न चुकी है। आसपास की जो गांव की जो कृषि योग्य भूमि होती नी और जो प्राकृतिक आवास होता वो धीरे धीरे आवासीय कॉलोनियों में बढ़ गया है। हमें देखो अब मैंने जो बात करी नी देखो पर जो कॉलोनियों है दूर दूर तक फैल के अमर सागर गांव तक पहुंच गई है, गजरूप सागर तक पहुंच गए। तो ये की है बट तो शहरीकरण ही तो है, धीरे धीरे गांव न खत्म कर रहे हैं और शहर न बढ़ाए रहे है। ये जो को ग्रामीण जो को संस्कृति थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ये अपर वास्ते एक सोचनीय बात है। बीजू है कि संसाधनों रो दोहन हो रही है। ग्रामीण इलाकों में आप देखो तो के सीमेंट रे फैक्ट्री लागे है, के ईटो रे फैक्ट्री लागोड़े है। तो ये सुखी है कि वहाँ से जो को अपशिष्ट निकले वो धुआं निकले वो सुकर वहाँ जो को पास में न रेवन आला लोग है नी वहाँ रे स्वास्थ्य न बहुत हानि पहुँचा रहे हैं, नुकसान दाय है। तो ये वो धीरे धीरे आपरा घर छोड़ घर बार छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये जो बात करो कि जो अपनी पारंपरिक संस्कृति है थी वो अपर जीवन शैली की पहचान कदे तो देखियो कि अपर मसाला जो होता वो सिलबट्टे माथे पीसी जाता हमेशा, कोई भी मसालो तो सिलबट्टे माथे पीसी। तो या पछे जैसे अपर मिर्चों होते घर में ना लोग है नहीं है जो मोम रस्ते में ना वो मिर्चों ने कूट के छोण के और पछे वो बारीक वो छोड़ी थे और वो घर में कूटी थे। लेकिन आजकल पैकेट बंद मिर्च ले आओ बस, कोई शरीर न तो दौड़ो को करना, लेकिन वो शरीर न दौड़ो उड़ में थानी की मिला आदि मिलावट हुई तो अपर शरीर ना आप ही नुकसान कर रही पड़े। बीजो और मसाला पीसना सिलबट्टे माथे मसाला जो को पीसता वो हण तो अपर मिक्सी में न पीसी दे रहा। तो धीरे धीरे अपर जितनी भी पुरानी परंपराओं होती अपर जीवन रो जो रहस्य है तो जीवन जीवन जो कलाओं होते वो सब धीरे धीरे ये आधुनिकीकरण में ना या उपकरणों में ना खोए गई है। तो बहनों ए अपने शरीर न ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा हुई जो को चीज़ अपन खुद घरे हाथ टू पीस कूट पीस के जो को चीज़ बनावे नहीं वो मैंने जो अपनी ताकत ला गई जो अपनी मेहनत ला गई नहीं वो यहाँ चीज़ों में ना होया को नहीं करे। मिलावट दुनिया भरी भरोड़ी रही पैक्ड हुई थानी कदरा बनोड़ा हुई है तो ताज़ा मसाला पीस के अपन जो इस्तेमाल करता नहीं वही तो कोई होड को नहीं होती। खाणो बनावण में ना जो खाणो चूल्हे माथे बनतो आजकल गैस माथे बने, हालांकि चूल्हे जगावण से धुआं हो तो लेकिन वो जो धुआं हो तो थोड़ो बहुत नुकसान तो करतो शरीर ना, लेकिन हाणा रे टाइम में ना जो है आधुनिकीकरण हो कि अपर जो गैसों माथे पर खाणो बनाने ये भी कुछ अपर शरीर वास्ते सही को नहीं। तो कहण रो मतलब यही है कि जो अपनी ग्रामीण संस्कृति हती अपनी जो पुरानी परंपराओं थे लोक संस्कृति हती लोक गायन शैली हती अपर जो पुराना मिट्टी का बर्तन बीजा घड़ा बीजा जो बनावता वो जो कलाओं थे उन्हें लुप्त मत होने दो उन्हें वापस तू अपनाओ। अपनी जीवन शैली में जब यह चीज़ों की पाछी तू आगमन होते नहीं तो देखो अपनी जीवन शैली में भी कितो सुधार होते। साथ में हूँ बहनों ने यह कहना चाहिए कि अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है जो अपना संस्कार है वो बच्चों ने जरूर जरूर देना चाहिए ताकि उम्र आवन आलो जो भविष्य है वो और निखर सके और अच्छो हो सके। तो ये रे साथ में ना देखो बहनों अपनी बातों तो यहाँ झूठी रहते लेकिन सुनता है जरूरी संदेश और पछे सुनता बढ़िया जुड़ो लोकगीत।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

तो बहना हड़ा आप सुनियो बढ़िया जेड़ो लोक गीत। मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई लोक गीत सुने तो जी शोर हो जाए। आज अपो बातों भी कर रहे हो पुराने जमाने री, तो बहना थोड़ा भी याद हो से कि अपारे टाइम में ना जो फोटो री एल्बम होती नी वो एक यादगार रही होती हर कहरे घर में। मैं ख्याल से अपारे जो टाइम में ना जो बहना भी है उमर घर में ना फोटो वाली एल्बम तो जरूर हो सके। पहले रे टाइम में ना घनो पहले रे टाइम में जावा नहीं तो ब्लैक एंड वाइट अपर एल्बम होती काले काले फोटो में काला काला होता। लेकिन जो वो फोटो वाली जो यादव है नी उन पर एक बार देखो नी तो ताजा हो जाए वो फोटो में देखते कि भाई ए मोरे वही टाइम में फोटो है मो ए चीज करता था जिसके टाइम में फोटो खींची थी। तो आज आप तस्वीरों याद करो कि वही टाइम रो जो जमानो हो तो नहीं वो बड़ो खास हो वो पन्नों ने पलट कर पर याद जो है नी उन्हें ताजा करने जो मन में भाव हुई नी वो हणारे जो ये मोबाइल में ना पो करो नी ऊंचो नीचो की कहे ना स्क्रॉलिंग करो या स्वाइप करो ए जचा को नी वो जो चीज है नी वही तो बात ही निराली है। उन्हें आपको महसूस करने रो जो एक एहसास हुए नी वो बड़ो निराल हुए। आप कोई भी है ना पुरानी एल्बम निकालो और वे तस्वीर ना आप उंगलियों से छुओ उर माथे अगर मान लो थोड़ी धूल भी जम गई है तो वे धूल ना हटावो वो पन्नों की जो खुशबू है नी वो एक अलग ही एहसास करा। और हाणा दाई कोनी के मोबाइल में ना जितना मर्जी आवे फोटो खींचे सीमित तस्वीर होते हैं पर यहाँ कोनी के अपा बैठा बैठा 10-15 भेड़े भेड़े फोटो खींचवा दिया। हाँ हाँ एक जनो एक फोटो खींचा हो या बे तीन इस बत्ता कोई फोटो होता ही कोई क्योंकि वे टाइम जो होते ना फोटो वाली रील्स होती फिल्म होती फिल्म रो रोल हो तो और वे वास्ते हर जो तस्वीर होती है अपना सोच समझ कर खिंचावनी पड़ती और खास मौकों में खींची जाती कोई शादी ब्याह हो कहो जन्मदिन हो कहो बधौण हो तो फोटो खींची जाता हर टाइम हणा तो देखो ना मर्जी पड़े हणा वही बैठी हूँ मैं मेरी मर्जी से फोटो खींच ली वो चीज़ वो टाइम में कोनी होती हर कह के कैमरा कोनी होता बाकायदा फोटोग्राफर आओ तो वो फोटो खींच जाओ तो। और वे मिना देखो एक खास बात और होती बताऊँ क्या पर धैर्य हुई टाइम काम आओ तो कि धैर्य रो फल मीठो हुए कहीं नहीं कि सब्र रो फल मीठो हुए तो वो कैमरे से फोटो खींचाने बाद में ना अपन कितने दिनों बाद वो फोटो मिलता क्योंकि वो लैब में धुनन वास्ते जाता और पता अपन कितो इंतजार करना पड़ता और वो भी आप में ना एक रोमांचक कि आप फोटो खींचो अपन यहाँ दिख तो थोड़ी ना तो आजकल तो बेटा डिजिटल कैमरा आया जिसे मैं अपन फोटो खींच के बतावे कि भाई थोड़ा फोटो एड़ो आए वो टाइम यहाँ थोड़ी ना था फोटो खींचो पचे वो लैब में धुलन गयो जब फोटो पाछा बन के आओ तो जद अपन देखी था वो फोटो हमें तो बातें गए तो कहीं नहीं वो पुरानी बातों ने याद करो नहीं तो आप में ना एक अलग ही अनुभूति हुई। और अपन हना देखो डिजिटल स्क्रीन में हजारों तस्वीर हो गई और वे ना अपन एक स्क्रॉल में ना स्वाइप कर सका लेकिन पुरानी एल्बम में ना हर फ्रेम रे साथ में ना हर फोटो रे साथ में ना अपनी कोई नी कोई याद जुड़ी हुई हुई कोई नी कोई विशु कहानी जुड़ी हुई हुई। तो केवल ना मतलब यही है कि वो सुनहरे जो दिन हता वो ना याद करो वो भावनाओं ना वो एक दूसरे से साझा करो नी तो बात ही निराली हो जाते क्योंकि पुरानी यादों ना याद करनो भी आप में ना एक अलग ही एहसास है एक अलग ही रोमांच हो देखो नी। तो केवन रो मतलब ये है कि जो अपर बीत गयो दिन बीतोड़ा जो साल है वो मैं थोड़ा सी पाछा जाऊँ और वो यादों ने एक बार पाछे देखो तो बहनों आज थोड़ो सी टाइम निकाल हो सके तो आप कोई पुरानी एल्बम निकालो आप खुद भी जुओ और आप बच्चों ने भी बताओ कि देखो वो टाइम मैंने यो फोटो खींची था और मोनो कितो इंतजार करना पड़ता फोटो बन के आता जैसे तो वो बच्चों ने भी ध्यान पड़ते कि भाई हाँ महाराज को अगला लोग आता वो कौकर मतलब धैर्य धैर्य की परीक्षा होती है एक तरीके से। तो मैंने आज बातों तो ए कर लिए
हमें थोड़ी बात करो कि अपर जो को दिन भर आधा सु घणो दिन अपर जावी रसोई में ना, और रसोई में ना अगर अपर बात करो नी तो सबसे जरूरी है खानो बनावनो, और खानो तो हर कह रहे बस री बात कोनी बनावनो, क्योंकि खानो बनावनो भी एक कला है, और ये कला में ना जो को पारंगत हो जावे नी वो कह सको एक परफेक्ट रसोई हो है। हर कह रहे बसरी बात को नहीं हुए, हाँ ठीक है खानो बनाए हो जिम्मा दिया सब, लेकिन ये खाने में ना भले नॉर्मल रहे तो ही बनाए दे और में ना स्वाद होना चाहिए। तो अब थोड़ा थोड़ा किचन टिप्स कहनी आजकल की भाषा में ना वो होना जरूरी है। तो ये वास्ते ये टैलेंट नो ये हुनर नो सीखनो जरूरी है। अगर थोड़ा सीख अपा हुए मैंने टिप्स अपनाए लो ना पर खाणो बनावण में ना, तो अपर खाणो है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और खावण आला उंगलियों चाटता रहे। तो बात करो अगर देखो रायतो हणो गर्मी रो मौसम है रायतो तो अपा बनावता ही रहें, तो उर महीनो अगर करी पत्ता है नी वो सूखो पाउडर डाल दे तो और ज़्यादा स्वादिष्ट बन जावे। और सब्जियों अगर अपा पकावे नी तो वो ना मीडियम साइज में मध्यम आकार में ना काट पछे पकाओ, क्योंकि छोटा टुकड़ा काट सो नहीं तो वो पोषक तत्व भी वो नष्ट हो गया, तो मध्यम आकार का टुकड़ा करो और पछे वो पकाओ तो बढ़िया रहे से। लाल मिर्च पाउडर है वो ना सुरक्षित रखने वास्ते, क्योंकि देखो कीड़ा तो हर जगह पड़े, जगह हमें चौमासो आने वालों है तो वो कीड़ा तो जरूर पड़ेगा दोन महीना, तो मिर्चों में भी कदे कदे कुछ पड़ जावे, तो ये वास्ते की हींग रो एक टुकड़ो उर में डाल दे तो कोई कीड़ो बीजो लागे कोन। प्याज भूनो नी तो वो तम एक चम्मच शक्कर मिलावे तो इसको प्याज है वो जल्दी भून जावे रो। बीजो बात करो शक्कर, शक्कर न अगर चीटियों से बचाणो है तो वो मैंने 5-6 लौंग डाल दो तो चीटियाँ उरे नेड़े को आवे।

आ देखो हमें मौसम आ रही है बरसात रो, और बरसात रे मौसम में ना तो देखो पकोड़ा बनावा, कुरकुरा पकोड़ा, आह जी शुरू हो जावे। तो ये रे वास्ते पकोड़ा रे जो घोल गई वो में ना 2 चम्मच गरम तेल मिला ले, तो उवे सूखी है पकोड़ा है बहुत ज्यादा कुरकुरा हो जावे। चावल आवे, चावल देखो तो चावलों ना कीड़ों से बचाने वास्ते वो में ना आखो नमक वेन वो डाल दे, तो उन कदे कीड़ा लागे कौन। बीजो है हर घर में ना देखो दिन में एक बार चावल तो जरूर बने ही जाए, तो वो चावल और मैंने जो खुशबू आवे ना वो बरकरार रखने वास्ते वो में ना दालचीनी को एक टुकड़ो डाल दे, चावल एडा खुशबूदार बन से तो जिक्र कोई होड कोनी है। और बीजो है कि अगर अपन सब्जियों ना उबाल के बनाऊं, कोई भी सब्जी है तो उन्हें अगर उबाल के बनाऊं तो उबर में ना थोड़ा सा नमक डाल दे, तो चीनी सुखी हुई कि सब्जियों ने जो रंग है ना वो बदले कोनी। और बीजो है कि हरा धोना, अपन देखो हरा धोना तो हर सब्जी में ना डालें, तो उबर वास्ते वो ना कि ये सूती कपड़ो है ना थोड़ो सी हल्को गीलो कर वो ना रख देवे, तो वो सूखी है धनियो खराब कोनी हुए और वो ताजो ताजो ओड़ो रोड़ो पड़ी हो रही। तो ये छोटा छोटा किचन टिप्स है जिगे ना आप अगर अपना हुआ नहीं तो अपर जो को भोजन रो जो को स्वाद है वो और निखर के आवे। अब वो कोई नहीं एक रोटी खाने नालो 2 रोटी खासे, 2 रोटी खाने नालो 3 रोटी खासे, तो वो सूखी है अपर जो को भोजन रो जो को खड़ावन रो तरीको है वो भी केवी नहीं के एक नारी जो हुई जिके नो खानो खिलावन रो तरीको हुई। तो कौकर भी कर आपरे बच्चों नो आपरे घर रे परिवार रे सदस्यों नो खानो खिलावन अच्छी तरह सु और पौष्टिक आहार खुशबूदार भोजन और स्वादिष्ट भोजन ए खिलावनो सिर्फ एक गृहिणी जाने। और ए थोड़ा सी अगर किचन टिप्स वगैरह में नो आप मिला लो तो आप वास्ते भी बढ़िया रही से। तो बहनों आज तो आप बातों घनी कर लिए, तो हमें थोड़ा वक्त हो रही है कि आप भी थोड़ा मनोरंजन कर लो और हालो एक बढ़िया जोड़ो लोकगीत सुनो।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार

0: नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरु मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरु मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरु मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को

0: को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेस्ट 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आया है। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र और

0: देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ की रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @यायार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
5: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे समाचार। लीजिए अब प्रस्तुत है लोक संगीत। कलाकार हैं सुरभि चतुर्वेदी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: ये है नौ निहाल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

कर लूंगा सफर एक उम्र का पल मैं तमाम कर लूंगा।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दस्तक फिल्म से मदन मोहन की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अपने जिया की माई रे, मैं दस कहूँ कि अपने जिया की

0: daqui da sua rede.
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: नम्रा
2: नमस्कार।
1: कैसी हो चंचल?
2: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं, और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
1: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें ये हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
2: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
1: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
2: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं, और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
1: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
2: हाँ,
1: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं,
2: हाँ,
1: हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं, और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में
1: लगे,
2: और वहाँ आप ही संपर्क नहीं है, जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है।
1: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
2: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बात सेहत की हुई है, हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
1: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते
2: जी।
1: कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
2: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
1: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा जहाँ हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं,
2: और ये
1: उनका इंतजार होता है,
2: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
1: मुंह में राम, बगल में छुरी।
2: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें। पहला गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते ही।

0: कबूल कर लो सलामी हसरत, कबूल कर लो।
1: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तो मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
2: और ये मोबाइल जो है, ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है, लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
2: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं, और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना, उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती है जो दुनिया है, इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल। जब पहले जब हमें, अगर हम दूर दराज की बातें करें, अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था, तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे, या फिर फोन पर बात किया करते थे, या एसटीडी पर जाकर हम जो है वहाँ पर बात किया,
2: घंटों लंबी लाइन में लगा करते
1: थे, लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अभी काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है, और मिलकर बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: और जब हम बहुत ही फुर्सत पे होते हैं तो परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
2: और मंदाकिनी जी, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
1: अपना मोबाइल चेक करते हैं, किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है
2: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते, तो अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए,
2: बिल्कुल
1: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई, है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे हैं रिश्तों में जो आई कांटेक्ट, जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के, लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
2: बिल्कुल, शारीरिक रूप से हम वहाँ मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं।
1: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में, लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो, बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: आ, जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।

0: जेवो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चरण कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहां। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आवासीय बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज, और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी है। पर ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है
1: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
0: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा भी आपने कहा, हम सब बैठकर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है, इस पर हमें बकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
0: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था, और इस गीत ने सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की सह संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है, और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की

0: संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे ऐप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज ऐप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल। और इस कंपनी मोबीक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया, जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंदाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपने अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत ने उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी। और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना, वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती है खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुनेंगी
1: बिल्कुल
0: सा तुमको चोरी चोरी।

0: तो चंचल, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में। उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं, कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसकी जो मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
0: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है कि, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए, हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहां भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
0: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ, अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा, आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
1: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है। हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना, वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ है कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
1: और ये जो अभी मौसम चल रहा है, इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है
0: लेकिन हम कहां खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे श्रोता लिखती है कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें। और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
1: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बे मौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई इन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती है और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती है। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं, जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ खाने पियो और सबसे बात ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
1: एक और बात कि तली हुई चीजें जो है बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो उस ताजा तेल
0: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है,

0: हमारी कटोरी जीभ है ना, बाहर ही खाना पसंद करती है, और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है,
1: हाँ।
0: हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना।
1: जी।
0: एक यशोदा लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों के बजाय ताजे और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज्जा रोटी भी बनती है। घर की जो चीजें हैं स्वादिष्ट होती है, तो ये जो पिज्जा, बर्गर, ये चीजें हम घर में,
0: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
1: और बच्चे इन चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियां बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना, वहां बिल्कुल जो बची कुची सब्जियां उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती है, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताजी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रही थी कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो प्रयोग कर लिए जाए, और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किससे रोका है आपको।
1: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
0: बिल्कुल सुनाइए।

जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मिली मुझको जन्नत।

देगा मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत को जन्नत के बदले खुद

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी,
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये एक ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारी श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, छोटी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते।
1: हाँ,
0: जानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सभी जानते हैं। मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इसकी, उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है, और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी उन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा अच्छा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना, हम कॉपी
1: उदाहरण देकर
0: समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता है वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे।
1: हाँ, कि बिल्कुल,
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाएगा।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए, हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है।
1: हां
2: ठीक है। उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया, डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक

0: कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
0: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पर।
1: अच्छा,
0: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी।
0: दे लाइक्ड इट, दे शॉर्टलिस्टेड, कमर्शियल की जो बातें थी वो हुई। एंड आई जॉइन द थिंग, मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
0: जाके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी। और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था।
1: हाँ,
0: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा,
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम का।
0: हाँ, उनका एक अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा,
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट करा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है
1: जी,
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ। ये तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया, उनके लिए सब सेम थे,
1: सब सेम।
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले।
1: अच्छा,
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे, मतलब एक ही सीन हमारा, हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार
1: जी, जी।
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते हैं
0: आपके
1: रोल के बारे में?
0: हाँ,
1: क्या बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है।
1: जी, तो जी, जी।
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की
1: जी,
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है
1: हाँ,
0: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर
1: जी।
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है।
1: अच्छा,
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी।
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उसमें प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक। अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं।
1: अच्छा,
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक।
1: अच्छा,
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया, मैंने बोला ये करता हूं। तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, बोले कि नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना। नहीं नहीं यार वो गुस्सा हो जाएगा, लाइक ठीक है छोड़ यार। मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए।
1: हाँ,
0: मैंने बोला सर एक पॉइंट है। बोले हाँ बोलो। मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है। उन्होंने बोल के देखा, एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है
1: जी जी,
0: जैसे कैप्टन ऑफ द शिप।
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार, बड़ी बड़ी बोला गुड गुड डू इट एंड इट इज देयर इन द फिल्म।
1: यस,
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए। आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो वैसी रहे। आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है,
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है।
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है।
1: जी जी,
0: तो अच्छा मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो वो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे, मैं तो उसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता।
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी
0: है। बहुत जरूरी।
1: हाँ,
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी भी वही हुआ
1: जी।
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलते हैं कि महात्मा जी ये जो आपका प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है, तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी और वो जाने को बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे को रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं। और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी ची उदंती,

0: करतो है कि,
1: तो उसमें मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए।
0: हाँ
1: थोड़ा सा इमोशनल
0: है, महात्मा बोल रहा है मतलब,
1: अब जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली मतलब अरे करना यार काइंड ऑफ तो, लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसमें नहीं नहीं प्रोटोकॉल ये हो जाएगा वो हाँ। थोड़ी हमारे बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है ठीक
0: हाँ।
1: है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं, तो फिक्शन है और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है
0: बिल्कुल,
1: तो बापू पूरा पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया, मैंने राजजी को बोला सेट पे आए वो जब सीन करना था, हाँ चलो चलो, मैंने बोला राजजी ये हाँ बोलो, मैं ये ऐसा ऐसा बापू कैसे बोलोगे, मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा, हाँ बहुत बढ़िया ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए, वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो, तो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस।
0: क्या बात है,
1: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा
0: हाँ, हाँ।
1: कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू, वो पूछते थे कि आप क्या करोगे कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके राम से कैरेक्टर था जो विश्वास जी का कैरेक्टर था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो विक्रम मराठी के में काफी कैरेक्टर्स करता है,
0: बड़ा नाम है,
1: बड़ा नाम शोज करता है। हम लोगों ने साथ में 4 इडियट्स जो की थी हमने साथ में पहली
0: अच्छा, फिल्म, अच्छा
1: तो उसने कंटिन्यू किया, उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर और वापस आया तो 4 साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया
0: जी।
1: बोले हम लोग अच्छे दोस्त हैं। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना
0: जी,
1: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर उतने व्यूअर्स नहीं मिले
0: हाँ।
1: बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए, आपको 4.5 घंटे का होगा, बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए
0: जी
1: कि कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
0: अच्छा,
1: वो बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
0: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है, कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ, मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा कर रहा था अकेले, गया तो फैमिली के साथ था लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, 2 लफ्जों की है दिल की कहानी,
0: आइए सुनते हैं
1: जी।

0: दो लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह जाती जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है, तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ
0: जी।
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय
0: जी जी,
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनालिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा,
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल
1: 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो सर का नाटक था तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो शुरुआत पढ़वाते। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा,
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके,
1: अगर कोई चीज एक शब्द बोला है उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो एक छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर देके बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो ही विल वर्क ऑन यू। एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को दिया जाए। तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया,
1: ज्यादा जोर दिया जाता है तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं उनसे सीखा
0: जी।
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी सबकी एक अलग अलग वो होती है
0: जी, जी।
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग
0: जी, हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट,
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूं
0: जी,
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल,
1: जो कि टेलीविजन में फिल्म्स में पॉसिबल नहीं।
0: बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं
1: नहीं आएगा। सही बोला, अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ,
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: लाइव परफॉर्मेंस,
1: वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम्प दे जाती है
0: जी जी जी, और उसका जो भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त
1: तुरंत यू फील सो गुड कि जो मैंने किया उसका किस लेवल। अच्छा, एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया
0: जी,
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया
0: जी।
1: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है,
0: हाँ।
1: और मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली, और आप 15 दिन महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे छह छह दस दस पंद्रह पंद्रह लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक

0: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान मैं जब नागपुर में था
1: जी,
0: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे अमोल खान थे
1: जी,
0: उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे
1: जी,
0: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए।
1: अच्छा,
0: और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5-6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
1: अच्छा,
0: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
1: अच्छा,
0: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है।
1: अच्छा,
0: और लाइट कॉमेडी है।
1: तो ये कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
0: हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना।
1: हाँ,
0: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के साथ
1: जी,
0: लेकिन शायद एक फ्रेंडसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
1: जी, जी
0: जो शायद कुछ और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है। IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था।
1: अच्छा,
0: IPC 324। और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
1: जी,
0: जो कि YouTube पे अवेलेबल है।
1: हाँ,
0: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म
1: जी जी,
0: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
1: ओह, क्या बात है।
0: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
1: जी,
0: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारे का मा या
1: अच्छा
0: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया
1: जी जी,
0: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
1: हालांकि चलिए इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी
1: जी, आइए सुनते हैं।
2: मैं न जानू मतलब

0: जी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव।
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया,
0: अच्छा
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई,
0: अच्छा
1: छोटा सा किरदार था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी
1: जब
0: जी
1: तक, जैसे मैंने एक साथ ही में अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब,
0: अच्छा
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक।
0: जी
1: रुद्र में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का है, छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूं। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर साहब ने बोला कि आपसे ही कराएं, उनको
0: अच्छा
1: अच्छा लगा, और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाओगे।
0: हाँ
1: तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे में मैं घर पे बैठने वाला हूं, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं,
0: अच्छा
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं,
0: बिल्कुल
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे। थिंग्स
0: बिल्कुल
1: हैपन दैट वे ओनली, आई वेंट देयर, दे लाइक माई वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है।
0: हाँ
1: सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था,
0: जी जी जी
1: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
0: अच्छा
1: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना, एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप में,
0: जी जी
1: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक
0: जी
1: प्रोजेक्ट मेरे
0: जी
1: पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन। तो
0: क्या बात।
1: हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
0: अच्छा
1: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी,
0: अच्छा
1: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वो वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसे दिखाएंगे।
0: अच्छा अच्छा
1: और कैरेक्टर अच्छा था, जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा और उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं, कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
0: जी।
1: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ गलत कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो,
0: अच्छा
1: दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं,
0: हाँ
1: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन, तो
0: कई शेड्स हो सकते
1: कई शेड्स हो सकते हैं।
0: जी
1: सो जितने रस वो दिखा सकता है, उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है,
0: अच्छा
1: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी, जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
0: हाँ।
1: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने फांसे में लेट के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था ऐसा, ट्रू स्टोरी,
0: जी।
1: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है, इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था,
0: जी
1: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे।
0: अच्छा
1: तो बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट 1 साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में, बालाजी टेलीफिल्म बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का,
0: जी
1: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ पीपल,
0: अच्छा
1: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही
0: जी।
1: दैट वे।
0: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं का कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
1: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूं कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो।

0: लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं,
1: जी
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था यूं ही चला चल रहा है।
1: हाँ, मकरंद देशपांडे
0: मकरंद जी थे उसमें,
1: हाँ, वो फिल्म है,
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत है कि उनकी कारवां में वो चले जा रहे हैं
1: जी,
0: और ये गाना चल रहा है। और अभी बारिश आने ही वाली है,
1: हाँ,
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन।
1: हाँ,
0: और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो, और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में पहुंच जाते हो।
1: क्या बात, चलिए सुनते हैं यही की
0: जी।

मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई।

पूछा क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां।

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा, तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा
0: जी।
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में।
0: अच्छा,
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, आई प्रोड्यूस इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इन्फॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
0: जी

0: मैं एक साइड बनाता रहूं, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए,
1: अच्छा
0: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर। हम जैसे मैंने आपको बताया IPC 324, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई,
1: जी
0: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके मुझसे पकाएंगे।
1: जी
0: और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर।
1: जी
0: मैंने वागले के बाद में अभी वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है,
1: जी
0: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा किरदार।
1: और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
0: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है
1: जी।
0: बिकॉज दायरे ओटीटी अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
1: जी
0: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था
1: अच्छा
0: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
1: ओहो क्या बात।
0: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर गिनले दुश्मन ध्यान से, हारेगा
1: हाँ
0: वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से,
1: वाह
0: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूं इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आया।
1: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
0: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया ये गाना
1: यही
0: ही
1: गाना सुन
0: बहुत
1: ले।
0: एप्ट होगा कि हम जब जी जान से खेलते हैं,
1: जी
0: जी जान से लड़ते हैं,
1: जी
0: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा दुश्मन, नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो आपको मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत
1: हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं
1: ट्रू,
0: वो भी दुर्भावनाएं जो होती
1: हैं
0: वो भी हमारी दुश्मन है
1: ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है
0: जी,
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी
0: जी।
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है
1: जी,
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहां बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से काम करना चाहिए बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है,
0: हाँ,
1: ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ।
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें
0: जी, जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है
0: जी। जी, हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं
1: जी,
0: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ,
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI ये सब चीजें हमें पता नहीं थी।
0: हाँ।
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं
0: जी। जी,
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी। हाँ। और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ
0: जी,
1: और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ
0: जी जी,
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है।
0: हाँ।
1: जो कि दूर से देख के ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
0: वाह।
1: वो भली फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन मतलब
0: जी
1: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
0: जी, जी,
1: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने की जो ये प्रक्रिया है इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पे बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है तो एक

0: मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
1: हाँ,
0: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे।
1: हाँ,
0: ये मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता है।
1: क्या बात है, चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए है। तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अभी यहाँ पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहां से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में,
0: हाँ,
1: उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था,
0: अच्छा,
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
0: जी।
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 मेल 3 फीमेल, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
0: वाह,
1: बतौर कलाकार।
0: वाह वाह।
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल।

0: उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कौशिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी,
1: जी
0: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं,
1: जी, जी,
0: ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊ कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए। और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल जिनके पास समय है
1: जी,
0: जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो
1: जी, जी, जी,
0: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे।
1: क्या बात,
0: तो ये मेरा सबसे जरूरी है। अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो इसमें भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों है।
1: अच्छा,
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों?
1: ओह क्या बात,
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग। ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने ना भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया strugglesmart.com की आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो।
1: अच्छा,
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है,
1: हाँ
0: पॉजिटिव बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये
1: जी
0: दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि तीन चार साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी।
1: अच्छा,
0: द डोमेन नेम इज आल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है।
1: जी, जी।
0: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
1: निश्चित रूप से। और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहाँ हम कोई गाना सुनते हैं।
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी
0: कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
1: हाँ,
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भाई आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो।
1: हाँ,
0: और सपोज टू भी कि आप बहुत अच्छा आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी,
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
1: हाँ, तो आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
0: बिल्कुल,
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व नहीं,
0: महत्व नहीं है। तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ, हाँ।
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल
1: जी,
0: उसके
1: जी।
0: बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा। शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा 15 साल बाद, कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ,
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम,
0: लगे कि विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
1: जी जी जी।
0: तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो,
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
1: क्या बात, क्या
0: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत गाना है, आइए सुनते हैं
0: जी।
2: माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल दंगल दंगल दंगल, सूरज तेरा चढ़ता

गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी तक तक प्यारे दंगल दंगल दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती है पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। सांवले हाथी की हर चुनौती है रे सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है तो आंख से उसकी आंख मिला के फिर जाने का नाम है प्यारे दंगल दंगल दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल दंगल।

0: मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें और कितनों पे करना, आज लोगों की बारी जो कहेंगे देने दी, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। हाँ हाँ प्यार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे।
1: दंगल दंगल दंगल दंगल
0: सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे।
1: दंगल दंगल दंगल दंगल दंगल।

0: दिल का मौका जब फिर किस्मत देती है, दिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान लो बेहद देती है।
1: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी हैं, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाशिश को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका लॉबी ऑफ फेम भी देखा, यहाँ पे कौन नहीं आया है।
1: जी जी,
2: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं ऐसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान।

अभी आप विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। ये है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं, युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी।

सुनने वालों को आशा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पारंपरिक जो खेती है वह कितनी उपयोगी है और किस तरीके से यह स्थानीय संसाधन और देशी बीजों पर निर्भर होती है। पारंपरिक खेती वह प्राचीन कृषि प्रणाली है जो स्थानीय संसाधनों, जैविक खाद और देशी बीजों पर निर्भर होती है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, जैव विविधता को बढ़ा देने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय तक कृषि को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। पारंपरिक खेती के कई लाभ और महत्व है। जैसे हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका महत्व है वो है कि प्राकृतिक उर्वरता में वृद्धि होना। साथियों, इसमें रासायनिक खादों के बजाय गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता प्राकृतिक रूप से बनी रहती है। लागत में भी इसमें कमी रहती है। पारंपरिक खेती जो है वह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बीजों और प्राकृतिक संसाधनों का जो है इसके अंदर उपयोग होता है, जिससे किसानों को महंगे कीटनाशक और उर्वरक पर पैसे जो है खर्च नहीं करने पड़ते हैं। स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन भी होता है, यह रसायन मुक्त होती है पारंपरिक जो खेती है, जिसके कारण इसमें उगाई जाने वाली फसलें स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी होती है और पौष्टिक होती है। साथियों, पारंपरिक जो खेती है उसमें पर्यावरण और जलवायु संरक्षण सबसे विशेष माने जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय जलवायु के अनुकूल होने के कारण यह कृषि प्रणाली प्रदूषण को कम करती है और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखती है। साथियों, पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों को और फसल चक्र के उपयोग से जल का अपव्यय रुकता है और मिट्टी की नमी इसी तरीके से बरकरार रहती है। प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान हैं, पारंपरिक खेती करने वाले जो किसानों के समान जो उपज है वह बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कई मामलों में प्रति फसल अधिक उपज भी दर्ज मानी गई है। प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार के कृत्रिम रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके जो है कई सारे उपयोग और इसके महत्व और लाभ है, इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी जो जोखिम है और खतरे पूरी तरीके से जो है वह समाप्त हो जाते हैं। पारंपरिक खेती वह प्राचीन कृषि पद्धति है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और स्थानीय ज्ञान, प्राकृतिक संसाधन जैसे मानव श्रम, पशुबल, वर्षा, इन सब के ऊपर जो प्राकृतिक संसाधन है वह निर्भर होते हैं। इसमें रासायनिक उर्वरक जो है या फिर महंगी जो मशीनें हैं उनकी बजाय जैविक खाद और देशी बीजों का उपयोग किया जाता है। साथियों, पारंपरिक जो खेती है उनमें जो है संसाधन बहुत कम पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें जो कृषि कार्यों के लिए मुख्य रूप से बैल, देसी हल, स्थानीय जलवायु का उपयोग किया जाता है। इसकी लागत कम

और इसके जो संसाधन है वह भी कम है, इसीलिए हर कोई ऐसा जो किसान है वह अपने इन संसाधनों को जो है वह पूरा कर सकता है। जैविक खाद इसके लिए बहुत विशेष मानी जाती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट और फसल के अवशेषों का प्रयोग किया जाता है। साथियों, इसमें एक ही फसल उगाने के बजाय एक साथ कई फसलें उगाई जाती है जो मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषण के लिए अच्छा होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यावसायिक लाभ कमाने से ज्यादा परिवार और स्थानीय समुदाय के लिए भोजन को जुटाना होता है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम पौधों को भोजन और पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती से जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। फसल पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक दुश्मनों की उपस्थिति के अलावा पौधों की रक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली और पौधों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथियों, पारंपरिक जो खेती है वह सबसे अच्छी खेती मानी जाती है और यह सबसे प्राचीन कृषि प्रणाली भी है जो स्थानीय संसाधनों, जैविक खाद और देशी बीजों पर निर्भर होती है। यह जो है बहुत ही अच्छी भी मानी जाती है। इसके अंदर जो है वह व्यय कम होता है, मेहनत जो है वो बराबर लगती है और इसकी जो उपज है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मानव के स्वास्थ्य के लिए, संतुलन के लिए और इसकी जो महक है वह एकदम अलग होती है। इसके अंदर किसी अन्य कृत्रिम चीज का उपयोग नहीं किया जाता है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, जैव विविधता को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है जो लंबे समय तक जो है इतना लंबा जो समय है उसमें कृषि को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत फिल्म हम आपके हैं कौन से। अब हम चर्चा करने वाले हैं कैरियर

ओरिएंटेड स्टडी। साथियों, कैरियर ओरिएंटेड स्टडी का मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक थ्योरेटिकल ज्ञान देने की बजाय व्यावहारिक कौशल, प्रैक्टिकल स्किल्स और उद्योग की जरूरतों के अनुसार रोजगार के लिए तैयार करना है। आजकल हम देखते हैं कि जो शिक्षा है वह सभी को समान रूप से दी जाती है, लेकिन अब जो है जमाना बदल रहा है साथियों। हर चीज़ जो है हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बाहर आ रही है। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम ये देखें कि जैसे जैसे स्किल्स युवा की बढ़ती जा रही है, वह अपनी स्किल को निखारने के लिए आगे आता है, तो वह अपनी स्किल के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो है वह स्टडी करें, ताकि वह अपने करियर को ध्यान में रखते हुए उसी चीज़ की स्टडी करे जो उसको आगे गोल चाहिए, जो उसका जो है वह लक्ष्य है, और उसके अनुसार जो है वह अपना रोजगार भी तैयार कर सके। यह शिक्षा सीधे किसी विशिष्ट कार्य, उद्योग या पेशे से जुड़ी होती है। कैरियर ओरिएंटेड स्टडी के जो है वह ऐसे हम कह सकते हैं कि एक बच्चे का भविष्य तैयार करती है, और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि 10वीं के बाद में डिप्लोमा करने के बाद में वोकेशनल कोर्स करना। यदि आप कम समय में अपनी शिक्षा पूरी करके नौकरी को शुरू करना चाहते हैं तो 10वीं के बाद यह विकल्प बेहतरीन हो जाता है। इसके अंदर आप जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं वहाँ के कोर्सेज दे सकते हैं। आजकल तो साथियों हम ये देखते हैं कि बड़ी सिटीज में ऑनलाइन कोर्सेज या फिर कोई कोचिंग और इतनी आसानी से हमें जो है इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है, फ़ोन नंबर और भी जो हमें उपलब्ध हो जाते हैं, तो इसी के ज़रिए ही हम किसी भी कॉलेज में या कोर्स से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं और जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ सकते हैं। साथियों, यदि हम कैरियर ओरिएंटेड स्टडी करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो हमारी रुचि है, जिस चीज़ में हमारा कौशल है, क्या हम उसके हिसाब से अपनी स्टडी कर रहे हैं। 10वीं तक जो है एक बच्चा, उसको यह समझ में आ जाना चाहिए 10वीं 11वीं तक कि मुझे क्या लक्ष्य तैयार करना है, क्योंकि 11वीं में और इसमें यह उनके भविष्य का जो है वह एक नींव मानी जाती है। वह तैयार करता है 11वीं 12वीं का जो बेस है वह तैयार करता है कि इनको आगे कहाँ जाना है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि 10वीं के डिप्लोमा करने के बाद में अपने बड़े बुजुर्ग से सलाह लेने के बाद में खुद की कौन सी रुचि है, किस सब्जेक्ट में उन्हें जाना है, इसकी बात करने के बाद में अपनी शिक्षा को आगे जारी रखें, ताकि ऐसा ना हो कि हम पढ़ कुछ रहे हैं, रुचि हमारी किसी और में है और लक्ष्य हमारा कोई और है। इससे क्या होता है, ना तो शिक्षा में पूरा मन लगता है और लक्ष्य की ओर जाने से भी हम थोड़े पीछे रह सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले दिमाग में यह चीज़ सेट करनी चाहिए कि हमें किस प्रकार की स्टडी करनी है, उसके हिसाब से ही हमें कोर्सेज लेने चाहिए, उसके हिसाब से ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए जो हमारे आगे भविष्य को तैयार करे, जो हमारा करियर तैयार करे और हम जल्दी ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग या फिर कोई ऐसी जो है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ ऐसे ही में उन्हें कुछ करना होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर आए, आपको अकाउंटिंग आए या फिर आप साइंस में भी आगे आ सकें। जैसे जैसे आपका जो गोल है, जिस प्रकार की जो है आपकी शिक्षा है, उसी हिसाब से आपको स्टडी करनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए और जो है ये देखना चाहिए कि हमें हमारा झुकाव किसकी ओर है। यदि आप मेडिकल में, नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से लेना चाहिए, मैनेजमेंट है, BBA है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी रुचि है, जिसमें आप ये सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, उसी के हिसाब से हमेशा स्टडी करनी चाहिए। 10वीं के बाद में यह सब चीज़ें शुरू हो जाती है। यदि वहाँ तक समझ में नहीं आता है तो हम ये कह सकते हैं 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद में हम यह सोच सकते हैं कि हमारा कैरियर कहाँ जा रहा है। स्नातक पूरी करके जो छात्र है

मिलने की संभावना अधिक होती है। साथियों, इंटर्नशिप और व्यावहारिक जो प्रशिक्षण है, अधिकांश कैरियर उन्मुखी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम के दौरान ही इंटर्नशिप में शामिल होता है। कैरियर कोर्स चुनने के बाद में जो है, सबसे पहले ये देखें कि आप किस काम को बिना बोर हुए कर सकते हैं, और जो है यह भी हम देख सकते हैं कि बाजार की मांग क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ केयर जैसे उभरते क्षेत्र में कैरियर की संभावनाएं आजकल बहुत बढ़ गई है। यदि हम उन सब चीज़ों में न जाकर जहाँ पर जो है किताबी ज्ञान जाता है, हम प्रैक्टिकल यदि कोई चीज़ें देख सकते हैं तो उसमें भी आजकल जो है वह कैरियर की संभावना ज़्यादा बढ़ चुकी है। साथियों, भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम देखें तो AI है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ केयर जैसी तकनीकी और व्यवहारिक जो है कोर्सेज है वह भी फ्यूचर को बताती है। यह कोर्स जो है वह बहुत ट्रेंड्स में भी है। सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि यह छोटे बच्चे हैं, आज के जो युवा है वह फ़ोन चलाते हैं, AI उनको समझ में आता है, या फिर वह जो है हेल्थ केयर के बारे में भी काफ़ी एनिमेशन ज्वेलरी है, आर्ट है और पेंटिंग है, इन सब चीज़ों के में वह काफ़ी रुचि लेते हैं और इन्हीं के हिसाब से वह अपने कैरियर को चुन सकते हैं। साथियों, यदि कैरियर ओरिएंटेड स्टडी होती है तो जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, जो युवा है, जो अपना कैरियर बनाना चाहता है, वह शुरू से ही ये समझ जाता है कि मुझे यहाँ तक जाना है, और वह जड़ से ही इसकी स्टडी करना शुरू कर देता है। यहाँ वहाँ से जिनसे भी इनको सुझाव लेना होता है वह सुझाव लेता है। अपनी जो है जिन चीज़ों में इनको डाउट होता है वह डाउट क्लियर करने के बाद वह स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है और आगे बढ़ता है, जिससे वह अपने गोल तक पहुँचता तो है, उसके साथ ही अपनी जो स्किल है उसमें वह एकदम तीक्ष्ण और शार्प होता है, जिससे उसका काम भी बहुत अच्छा होता है और हर जगह उन्हें सफलताएं मिलती है। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत फिल्म बागवान से। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि मोटा अनाज जो है वह हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायी होता है। साथियों, मोटे अनाज में जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, जौ, ये जो है ऐसे अनाज है जिसे सुपर फूड कहा जाता है। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन और कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं। ग्लूटेन फ्री होने के कारण ये पाचन को सुधारते हैं, ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं और वजन घटाने में भी मदद करते हैं। साथियों, इसीलिए इन्हें सुपर फूड कहा जाए, क्योंकि इनमें जो है भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन होता है, जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा होती है। और इसी वजह से ग्लूटेन फ्री होने के कारण जो है यह वजन घटाने में भी मदद करते हैं। मोटे अनाज के कई सारे लाभ हैं। इसमें विशेष रूप से जो है वह पाचन तंत्र को यह मजबूत करता है। साथियों, इनमें अघुलनशील फाइबर होता है जो कब्ज को रोकता है और पेट को स्वस्थ रखता है। मोटे अनाज का जो है सबसे बड़ा जो फायदा है वह जो है जिसे शुगर है उनके लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यह डायबिटीज़ में बहुत फायदेमंद होता है, जो शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देता। साथियों, फाइबर में भरपूर जो है इसमें फाइबर भरपूर होने के कारण इनमें खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ रहता है और पेट भरा हुआ सा महसूस होता है, जिससे आप

जरूरत से ज़्यादा खाने से बचते हैं। मोटे अनाज को खाने से हड्डियां भी मजबूत होती है। रागी और बाजरा जैसे अनाज कैल्शियम की बेहतरीन स्रोत हैं, जो हमेशा ही हमारी जो हड्डियों से संबंधित जो रोग है उसके खतरे को कम करते हैं। दिल के लिए भी यह बहुत ही अच्छे होते हैं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय रोगों के जोखिम को घटाते हैं। साथियों, मोटे अनाज को जो है उसको खाने का भी एक तरीका होता है कि इसको किस तरीके से किस मात्रा में लिया जाए। इन अनाजों को अपने दैनिक आहार जैसे रोटी, दलिया, खिचड़ी में शामिल कर सकते हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में अच्छी तरीके से अवशोषित होने देने के लिए हमेशा कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर या अंकुरित करके स्प्राउटर जो है उन्हें लेकर फिर जो है खाना चाहिए। मोटे अनाज में जो है जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, यह पोषक तत्वों के खजाने हैं और ग्लूटेन फ्री होने के साथ इनमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। ये पाचन सुधारते हैं, ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं और तो और वजन कम करने में यह बहुत मदद करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जो है वजन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो है जो चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए होती है वह नहीं मिल पाती। ऑयली इतना खाना हो जाता है, जंक फूड हो जाता है, बाहर की जो चीज़ें हैं वह ज़्यादा हो जाती है। जो चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए होती है जैसे फाइबर है, आयरन है, कैल्शियम है, वह हमारे शरीर को नहीं मिलता, सिर्फ हमारा पेट भरता है। और सिर्फ पेट भरने से शरीर में वो एनर्जी नहीं रहती जो एनर्जी चाहिए होती है। यदि इस प्रकार की भी हम चीज़ें खाएं, इस प्रकार का हम भोजन करें तो हमारे शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। यदि आप मोटे अनाज को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं साथियों, तो यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यह पाचन तंत्र और सेहत के लिए एक वरदान है। मोटे अनाज जो है उसका सबसे अच्छा आज के समय में उपयोग ये है कि मोटे अनाज में मौजूद उच्च फाइबर लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे कि बार बार भूख नहीं लगती और वजन भी नियंत्रित रहता है। मधुमेह जो है इसमें नियंत्रण रहता है और हम ये कह सकते हैं कि आजकल तो इसको बनाने के इतने अलग अलग तरीके आ गए हैं। पहले तो इस खाने को जो है बोरिंग माना जाता था, टेस्टलेस माना जाता था, लेकिन साथियों आज के समय में इतनी स्किल्स बढ़ गई है खाने में भी कि इसको इतनी अच्छे तरीके से बनाते हैं, इनमें स्वाद इतने अच्छे से डाल दिया जाता है कि यह खाना बोरिंग नहीं लगता, यह स्वादिष्ट भी लगता है और हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है और हमारे शरीर को फाइबर से भरपूर खाना मिल जाता है और यह पाचन क्रिया को जो है बहुत अच्छा करते हैं और कब्ज की समस्या से भी राहत दिलाते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात है हड्डियों की मजबूती। आज हम देखते हैं कि काफ़ी कम उम्र के जो लोग हैं उनमें उनको उठने में, बैठने में, उनके घुटनों में समस्याएं रहती है, क्योंकि यह जो इस प्रकार का मोटे अनाज का जो खाना है वह कम सेवन किया जाता है लोगों के द्वारा। तो यदि ये मोटे अनाज के जो है यदि इस सबको यदि सेवन किया जाए हमारे डेली में, तो इसके जो कैल्शियम इसमें होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साथियों, मोटे अनाजों में जो है वह कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे कि हृदय का जो खतरा है वह कम होता है। मोटे अनाज को और इसका पूरा लाभ पाने के लिए हमेशा ही कुछ घंटे इन्हें भिगोकर या अंकुरित करके खाना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इन मोटे अनाज के संभावित उपयोग जो है अनुसंधान और विकास ने इन्हें खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किए जाने की क्षमता को उजागर किया है। इनके खाद्य उपयोगों के अलावा इन अनाजों का उपयोग पशु आहार, जैव ईंधन और भी कई जगह पर जो है वह या फिर जो है सिरप के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। यह हमारे शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छा व लाभकारी माने जाते हैं। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर।
सुनते हैं ये प्यारा सा।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत फिल्म दीवाना से। साथियों, अब गौर फरमाते हैं एक सूचना पर। राज्य की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति में अपना सहयोग दें तथा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार होने के संबंध में शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप नंबर 9413502834 पर सूचित करें। क्या कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपके वैध काम के बदले आपसे रिश्वत की मांग कर रहा है तो घबराएं नहीं, ना ही रिश्वत दें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को तुरंत सूचित करें हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप नंबर 9413502834 पर संपर्क करें। साथियों, आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। एक जिम्मेदार नागरिक बने, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने में सहयोग दें। सूचना ऑन हुई। साथियों, अब हम जो है चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से वाणी में मिठास रख के हम अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। वाणी में मिठास रखने के साथ ही हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं और रिश्तों को यह वाणी की मिठास जो है मजबूत बनाती है। मीठा बोलने से न केवल सामने वाले का मन प्रसन्न होता है बल्कि आपकी अपनी जीवन में भी सुख व शांति बनी रहती है।

0: मीठा होने का भाव या गुण, यह किसी खाद्य पदार्थ के जो स्वाद जैसे चीनी शहद का मीठापन दर्शाता है। इसके अलावा इसका उपयोग लाक्षणिक रूप में बोली की में कोमलता, व्यवहार में मधुरता और आवाज में मिठास के लिए किया जाता है। साथियों, यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो यदि हम किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैंने अपने काफ़ी परिवारजन से कहते हुए सुना है कि हम डॉक्टर से बात करते हैं तो आधी बीमारी वहीं कम हो जाती है। तो वह क्या चीज़ है? वह चीज़ ये है कि हम जब किसी, चाहे डॉक्टर है चाहे टीचर है, किसी से भी, विशेषकर डॉक्टर से जो मैंने सुना है, तो बात करते हैं तो वो इतनी अच्छे से हमसे बात करता है, इतनी मिठास से हमसे बात करता है, हमें लगता है कि शायद कोई बीमारी है ही नहीं। उसी तरीके से आज हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, कोई भी लोग यदि हमारे साथ में अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो हमें उनसे बोलने में भी अच्छा लगता है तथा वहाँ पर बैठना हमें यूँ लगता है कि शायद हम उनसे और भी बात करें, उनके बारे में और भी जानें, या फिर वह जगह हमें रमणीय लगती है। इसीलिए हमारे व्यक्तित्व में और हमारी वाणी में मिठास बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, हम चर्चा कर रहे थे कि वाणी में मिठास हमारे व्यक्तित्व को कितना प्रभावशाली बनाती है। मीठी वाणी से न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा बनती है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत गहरा होता है। इससे हम किसी को भी और किसी क्रोधित व्यक्ति को शांत कर सकते हैं, कटु संबंधों को मधुर बना सकते हैं। यह न केवल दूसरों को खुशी देती है, बल्कि बोलने वालों को भी मानसिक शांति व संतोष प्रदान करती है। एक कोटेशन है कि जो आदमी जितना बड़ा होता है वह उतना ही सौम्य व सरल होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है तो उसका व्यक्तित्व इतना सौम्य हो जाता है, उसकी जो है वाणी वह इतनी मधुर हो जाती है कि वह सामने वाले व्यक्ति को भी उतना ही बड़ा महसूस करवाती है। इसीलिए हमारी वाणी और हमारा मधुर बोलना एक कला है, जिसे अभ्यास के साथ सीखा जा सकता है। इसके लिए बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलें, अपनी आवाज़ में सौम्यता लाएं और बातचीत में धन्यवाद, क्षमा जैसे विनम्र शब्दों का प्रयोग करें। अहंकार को त्याग कर दूसरों को भी सम्मान दें और वही सम्मान दें जो हम खुद चाहते हैं। इसीलिए हमेशा ही मीठा बोलना अपने व्यक्तित्व में जरूर जोड़ना चाहिए, जिससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। साथियों, हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया से। चर्चा तो और भी करनी थी साथियों, लेकिन आप घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं। आप सभी को आशा का प्यार भरा नमस्कार।

युवा साथी अभी युवाने कार्यक्रम सुन रहे थे। ये है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारी आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

सबसे पहले एक नजर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। रात 9 बजे आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। नौ बजकर 15 मिनट पर सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में न्यूज एट 9। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही मुख्य समाचार एक बार फिर आप सुन सकते हैं। रात 11:05 पर हिंदी में और 11:10 पर अंग्रेजी में।

आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:40 पर आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी। 6:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में।

आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, 6:05 पर यानी कि अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे रामचरित मानस गान पाठ। 6:15 होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 7:00 किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। 7:30 हम लेकर आएंगे आपके लिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। और 8:00 हमारे श्रोता आनंद ले सकते हैं अपने मनपसंद कार्यक्रम का फिल्म संगीत। 8:30 प्रसारित होगा हमारे स्टूडियो से कार्यक्रम सुगम संगीत। 9:15 पर एक बार फिर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 9:30 हम लेकर आएंगे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। और 10:00 हमारे श्रोता आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम शाम गजल का। 10:30 फिर एक बार आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 106.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान पाठ।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की आरती उतारी।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण पहले हिंदी में, फिर राजस्थानी में होगा। प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले होंगे।
1: मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल, साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा गठन के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में कल से अमृत

0: महोत्सव की शुरुआत साल भर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य में शादी, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब केवल वैध लाइसेंसधारी हलवाई और कैटरर ही सेवाएं दे सकेंगे। प्रदेश भर की सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सघन स्क्रीनिंग के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा और राज्य के सभी 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुई अभिभावक कार्यकर्ता बैठक में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से अमृत महोत्सव की शुरुआत होगी। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का समापन सत्र में शिरकत का कार्यक्रम है। उत्सव में राज्य के लोकतांत्रिक विकास, ऐतिहासिक कानूनों, संसदीय परंपराओं और डिजिटल विधानसभा के भविष्य पर मंथन होगा। वहीं वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम रहेगा। अमृत उत्सव के तहत साल भर तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका समापन अगले साल राजस्थान स्थापना दिवस पर होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि समारोह में 6 और उससे अधिक बार रहे पूर्व विधायकों का सम्मान भी किया जाएगा।
1: सन 1952 में पहली बार चुनाव हुए और ये 16वीं विधानसभा है, तो इस 16वीं विधानसभा तक जो भी विधायक अभी हमारे बीच में हैं, उन सबको इसमें सादर आमंत्रित किया है कि जो 6 बार से अधिक विधायक रहे, ऐसे लगभग 26 लोग हैं जिनका सम्मान भी हम लोग करेंगे और उनके सम्मान के साथ साथ जो आज तक अध्यक्ष रहे जो उनका भी सम्मान समारोह होगा। तो इस तरह कुल मिला के 33 लोगों का उसे सम्मान किया जाएगा।
0: प्रदेश में शादी ब्याह, धार्मिक आयोजनों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब केवल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के वैध लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वाले हलवाई, कैटरर्स और भोजन सेवा प्रदाता ही अपनी सेवाएं दे सकेंगे। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से इसके लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP के तहत ये व्यवस्था लागू की गई है। इस प्रक्रिया में आयोजन से पहले कैटरर को सारी जानकारी संबंधित अधिकारी को देनी होगी। SOP के तहत सभी हलवाइयों और खाद्य व्यवसाय संचालकों का सत्यापन भी किया जाएगा। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त भगवंत सिंह ने बताया कि सभी मैरिज गार्डन, विवाह स्थलों और होटलों को भी उनके परिसर में लाइसेंसधारी खाद्य संचालकों से ही खाना तैयार करवाना और परोसना सुनिश्चित करना होगा। बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भोजन की गुणवत्ता, भंडारण और पेयजल व्यवस्था का भी जायजा लेंगे।
2: सामूहिक भोज का कार्यक्रम होता है, विवाह सम्मेलन हो गए और कोई रिलीजियस फंक्शन होते हैं, उसमें क्या कि काफी मात्रा में खाना बनता है और कई बार शिकायतें भी आती है और कई बार एक्चुअल सिचुएशन भी होती है जहाँ फूड पॉइजनिंग के केसेस हो जाते हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर जारी करे हैं कि आप जो भी इस तरह के फंक्शन में खाना बनवाएंगे तो वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए या रजिस्टर्ड हलवाई या कैटरर होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तो उसमें फर्दर उसकी जिम्मेदारी भी हम तय कर पाएंगे और साथ ही जो हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट में उसको कार्यक्रम की डिटेल, वो आयोजन स्थल कहाँ पर है, उसका आयोजक का क्या नाम है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ रहेगी तो उससे निश्चित रूप से इस तरह के फूड पॉइजनिंग केसेस को हम मॉनिटर कर पाएंगे। यही हमारे इसके ऑर्डर को, इस SOP को जारी करने के पीछे मंशा थी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा का दौरा निरस्त हो गया है। बरसात और खराब मौसम के कारण इसे रद्द किया गया है। मुख्यमंत्री का प्रागपुरा नगरपालिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर में पहुंचने और लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से संरक्षण कार्य करवाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसे उत्खनन स्थलों और विरासत परिसरों के विकास की डैश योजना में शामिल किया है। इसके तहत ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण किया जाएगा, साथ ही म्यूजियम, वॉकवे, हिस्ट्री गैलरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर और पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा डिजिटल तकनीक और ऑडियो विजुअल माध्यम से मेवाड़ के इतिहास को प्रस्तुत किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारत मंडपम में हो रहे इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टैक्स अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का भी वस्त्र क्षेत्र को फायदा मिल रहा है।
3: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर की सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जयपुर में बैठक कर VC के माध्यम से सभी चिकित्सा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर, ANM और CHO के जरिए स्क्रीनिंग का ये काम करवाया जाएगा। श्रीमती राठौर ने प्रत्येक गर्भवती महिला की 4 गुणवत्तापूर्ण ANC जांच अनिवार्य रूप से कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर आज भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी अस्पताल परिसर का जायजा लिया। इसके बाद श्री खेवसर ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जयपुर से आई टीम ने भीलवाड़ा में हुई प्रसूताओं की मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मातृ और शिशु स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है।
4: हमारी जयपुर से एक टीम आई, उन्होंने जांच करी, लेकिन हमारे सीनियर लोग ऑल राजस्थान के आए, अब मैं भी आया यहाँ पर। हमने सब चीजों की जांच की है और मैंने कुछ दस्तावेज की मांग करी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और हमने मंगाया और बांसवाड़ा में आज जा रहा हूँ।
0: चिकित्सा मंत्री इसके बाद बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि हाल ही में बांसवाड़ा में भी विभिन्न कारणों से कुछ प्रसूताओं की मृत्यु हुई थी। स्थिति का जायजा लेने के लिए चिकित्सा मंत्री अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से ऑस्ट्रेलिया के उच्च स्तरीय राजनयिक पॉल मर्फी ने आज लोकभवन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। साथ ही राजस्थान में उच्च शिक्षा, आदिवासी संस्कृति संरक्षण और कृषि में नवाचारों पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक पर और ब्यौरा न्यूज डेस्क से।
5: राज्यपाल श्री बागड़े की पहल पर राजनयिक श्री मर्फी ने राजस्थान के विश्वविद्यालयों के साथ ऑस्ट्रेलिया के उच्च शैक्षिक कार्यक्रमों के एक्सचेंज की संभावनाओं पर काम करने की सहमति जताई। आने वाले दिनों में राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलगुरु और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षाविदों तथा कुलपतियों के साथ VC के जरिए संवाद और चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कम पानी और शुष्क वातावरण में कृषि से जुड़ी पद्धति के बारे में भी राजस्थान को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में राजस्थान की आदिवासी धरोहर संरक्षण पर भी विशेष विचार विमर्श किया गया। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल लर्निंग लैब स्थापित की जाएंगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में ये जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा होगी। मुख्य सचिव PM श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों की राज्य स्तरीय वेबिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन लैब से विद्यार्थियों को अध्ययन में सहायता मिलेगी। उन्होंने हर PM श्री स्कूल में सुझाव पेटिका लगाने और सफलता की कहानियां साझा करने की बात कही। वेबिनार के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न स्कूलों के नवाचारों और सर्वोत्तम नीतियों को अन्य स्कूलों में भी लागू किया जाएगा।
6: राजस्थान में जो PM श्री स्कूल्स के माध्यम से जो एजुकेशन मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, इनमें कई नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस आज हमारे सामने आए हैं। ये हम भारत सरकार में सामने भी प्रस्तुत करेंगे और इसी क्रम में अन्य स्कूल्स को भी डेवलप करने के लिए सारे प्रयास, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसको हम लोग इसी क्रम में और भी वेबिनार सारे आयोजित करेंगे, टॉप परफॉर्मर्स को राज्य के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वो अपना चैलेंजेस और सक्सेसेस पूरा राज्य में बाकी सब लोग सुन के सीख सकें।
0: प्रदेश के सभी 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

0: PAM बैठक आयोजित की गई। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से हर महीने ये बैठक रखी जाती है। समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS के निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के माता पिता के साथ स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर चर्चा की गई। मीटिंग में बच्चों के परिवार के पुरुष सदस्यों की सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही बच्चों की गतिविधियों और पोषण सहित अन्य विषयों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गौ मांस उत्पादक देश है। PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान विधानसभा गठन के 75 वर्ष के उपलक्ष में कल से अमृत महोत्सव की शुरुआत। साल भर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य में शादी, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में आप केवल वैध लाइसेंसधारी हलवाई और कैटरर ही सेवाएं दे सकेंगे। प्रदेश भर की सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सघन स्क्रीनिंग के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश की सभी 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुई अभिभावक कार्यकर्ता बैठक में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्याम लाल ने तैयार किया है। जिले में इस बार मॉनसून की शुरुआत देरी से हुई। जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश शुरू होने के बावजूद पूरे जिले में समान वर्षा नहीं हुई। कई क्षेत्रों में खरीफ की फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिले में 8,32,000 हेक्टेयर में खरीफ बुआई का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुकाबले अब तक 7,13,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। जिले में जुलाई माह के दौरान औसतन 42 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। नागौर की प्रसिद्ध पान मेथी की खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सोलर ड्राइव पर 40% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। इससे किसान पान मेथी के साथ ही काचरी, टमाटर, मिर्च और अन्य कृषि उत्पादों को स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से सुखा सकेंगे। उद्यानिकी विभाग के अनुसार पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत लागत का 50% तक अनुदान देने की व्यवस्था की है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार किसान विभागीय पोर्टल पर इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से औषधीय खेती को बढ़ावा मिलने और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। बीते दिनों पर्यटन विभाग की टीम ने खींवसर क्षेत्र के भूंडेल गांव स्थित लोक देवता वीर हड़बूजी महाराज की जन्मस्थली का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर और आसपास में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग, विश्राम स्थल तथा अन्य सुविधाओं के विकास की संभावनाओं का आकलन किया। स्थानीय लोगों से भी सुझाव लेकर आगे की कार्य योजना तैयार की जा रही है। बीते दिनों बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा HPCL रिफाइनरी के उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम का नागौर में भी सजीव प्रसारण किया गया। जिला मुख्यालय के टाउन हॉल सहित सभी ब्लॉक मुख्यालयों और ग्राम पंचायत में लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों में चयनित 2047 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। जिले में बीते दिनों राष्ट्रीय सहकार सप्ताह के तहत सहकार संवाद दिवस नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भदवाड़ा में चित्रकला, क्विज, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विद्यालय के 120 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 1 जुलाई को आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय मेड़ता सिटी में

0: शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षाओं का संचालन शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई है। पहले चरण में विद्यालय में 1 से 5वीं तक की कक्षा का संचालन होगा। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार आगे की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। बीते दिनों नागौर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अमरपुरा के गांव गोड़ला में विकसित भारत जीराम जी योजना का शुभारंभ 111 पौधों का रोपण करके किया गया। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को बढ़ावा देना है। 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर कृषि महाविद्यालय नागौर में कार्यशाला आयोजित की गई। भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में आंकड़ों के महत्व, प्रशासनिक डेटा के प्रभावी उपयोग और नीति निर्माण में उनकी भूमिका पर चर्चा हुई। इस अवसर पर एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2026 जिला और ब्लॉक फोल्डर का विमोचन किया गया। देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के माध्यम से जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया। निर्धारित कोटे के अनुसार नेपाल स्थित पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा के लिए 146 और विभिन्न तीर्थ स्थलों की रेल यात्रा के लिए 1,193 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इसी के साथ नागौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: पहलियां आज री खास खबरां, राजस्थान विधानसभा गठन रा 75 बरस रे मौके माथे काले सु अमृत महोत्सव री शुरुआत, साल भर के खास कार्यक्रमों रो आयोजन वेला। राज्य माए शादी, धार्मिक आयोजना और सार्वजनिक कार्यक्रम माए अबे केवल वैध लाइसेंस धारी हलवाई और कैटरर ही सेवावां दे सकेला। प्रदेश भर री सगली गर्भवती महिलावां रे स्वास्थ्य री सघन स्क्रीनिंग खातिर काले सु खास अभियान चलायो जावेला। और प्रदेश रा सगला 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रा माथे भी अभिभावक कार्यकर्ता बैठक में टाबरा रे स्वास्थ्य और शिक्षा माथे चर्चा। समाचार रे साथे मैं संगीता शर्मा, अबे समाचार विगतवार। राजस्थान विधानसभा रा 75 बरस पूरा होने रे मौके माथे काले सु अमृत महोत्सव री शुरुआत वेली। उद्घाटन जलसे माए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भीड़ा वेला, वटीने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण समापन सत्र माए भीड़ा होवन रो कार्यक्रम है। उत्सव माए राज्य रा लोकतांत्रिक विकास, ऐतिहासिक कानूना, संसदीय परंपरावां और डिजिटल विधानसभा रे भविष्य माथे मंथन वेला, वटीने मौजूदा और पहली आला विधायकारो समागम रहेला। इनरे तहत साल भर ताई खास कार्यक्रम रो आयोजन करो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो के जलसे माए 6 और 32 दफारिया पहली आला विधायकारो सम्मान भी करो जावेला।
1: सन 1952 में पहली बार चुनाव हुए और ये 16वीं विधानसभा है, तो इस 16वीं विधानसभा तक जो भी विधायक अभी हमारे बीच में है उन सबको इसमें सादर आमंत्रित किया है कि जो 6 बार से अधिक विधायक रहे ऐसे लगभग 26 लोग हैं जिनका सम्मान भी हम लोग करेंगे और उनके सम्मान के साथ साथ जो आज तक अध्यक्ष रहे जो उनका भी सम्मान समारोह होगा, तो इस तरह कुल मिला के 33 लोगों का उसे सम्मान किया जाएगा।
0: प्रदेश माए शादी ब्याह, धार्मिक आयोजना और दूजा सार्वजनिक कार्यक्रम माए अबे केवल वैध FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वाला हलवाई, कैटरर्स और भोजन सेवा प्रदाता ही आपकी सेवामा दे सकेला। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण महकमारी कानिसो इनरे खातिर जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP रे तहत आ व्यवस्था लागू करी जी है। इन प्रक्रिया माए आयोजन सु पहले कैटरर खानिसो सारी जानकारी जुड़ियोड़ा अहलकारा ने देवनी वेला। SOP रे तहत सगला हलवाइया और खाद्य व्यवसाय संचालकारो सत्यापन भी करो जावेला। महकमारा अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह बतायो कि सगला मैरिज गार्डन, विवाह स्थला और होटला ने भी वाणे परिसर माए लाइसेंस धारी खाद्य संचालका सु ही खानो तैयार करवाणो और परोसनो पक्को करनो वेला। बड़ा आयोजना माए खाद्य सुरक्षा अहलकार भोजन री गुणवत्ता, भंडारण और पेयजल व्यवस्था रो भी जायजो लेवेला।
2: सामूहिक भोज का कार्यक्रम होता है, विवाह सम्मेलन हो गई और कोई रिलीजियस फंक्शन होते हैं, उसमें क्या कि काफी मात्रा में खाना बनता है और कई बार शिकायतें भी आती है और कई बार एक्चुअल सिचुएशन भी होती है जहाँ फूड पॉइजनिंग के केसेस हो जाते हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर जारी करे हैं कि आप जो भी इस तरह के फंक्शंस में खाना बनवाएंगे तो वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए या रजिस्टर्ड हलवाई कैटरर होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तो उसमें फर्दर उसकी जिम्मेदारी भी हम तय कर पाएंगे। और साथ ही जो हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट में, उसको कार्यक्रम की डिटेल, वो आयोजन स्थल कहाँ पर है, उसका आयोजक का क्या नाम है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ रहेगी, तो उससे निश्चित रूप से इस तरह के फूड पॉइजनिंग केसेस को हम मॉनिटर कर पाएंगे। यही हमारे इसके ऑर्डर को, इस SOP को जारी करने के पीछे मंशा थी।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो आज प्रस्तावित कोटपुतली बहरोड जिला रा पावटा रो दौरो रद्द हो गयो है। बरसात और खराब मौसम रे कारण इन्हें रद्द करो गयो है। मुख्यमंत्री रो प्रागपुरा नगर पालिका माए राखीजा शहरी सेवा शिविर माए पहुंचनो और लाभार्थियों से बंटल रो कार्यक्रम हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग माथे 100 करोड़ रुपया सु 32 लागत सु संरक्षण काम करवाया जावेला। केंद्र सरकार इन्हें उत्खनन स्थलों और विरासत परिसरों के विकास की डैश योजना माए भेड़ो करियो है। इनरे तहत ऐतिहासिक इमारत रो संरक्षण करियो जावेला, साथ ही म्यूजियम, वॉकवे, हिस्ट्री गैलरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर और सैलानिया रे खातिर दूजी सुविधावां विकसित करी जावेली। इनरे अलावा डिजिटल तकनीक और ऑडियो विजुअल रे जरिए मेवाड़ इतिहास ने बतायो जावेला। देश रो सबसे बड़ो वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली माए शुरू हुयो। भारत मंडपम माए होरिया इन कार्यक्रम रो उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करियो। खबर नवी सांसू बणतल में श्री सिंह कहो कि भारत टैक्स अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुको है और हर बरस इन माए प्रदर्शक और आगंतुकारी तादाद में बढ़ोतरी वैरी है। पणा कहो कि न्यारा न्यारा देशों रे साथ कराया गया मुक्त व्यापार समझौता रो भी वस्त्र खेतर में फायदो मिल रो है।
3: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए, और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: ऐ खबर आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से सुन रहे हो। प्रदेश भर री सगली गर्भवती महिलावां रे स्वास्थ्य मानकारी सघन स्क्रीनिंग खातिर काले सो विशेष अभियान चलायो जावेला। 5 दिना ताई चलन वाला इन अभियान में गर्भवती महिलावां री प्रसव पहला स्वास्थ्य जांच करी जावेली। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जयपुर में बैठक कर VC रे माध्यम से सगला चिकित्सा अहलकार ने इन बारा में हुकुम दिया। पणा कहो कि आशा वर्कर ANM और CHO रे जरिए स्क्रीनिंग रो ओ काम करवायो जावेला। श्रीमती राठौड़ हर गर्भवती महिला री 4 गुणवत्तापूर्ण ANC जांच जरूरी रूप से कराने री बात कही। पणा कहो कि 32 जोखिम वाली गर्भावस्था खातिर अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनायो जावेला। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज भीलवाड़ा पहुंचा, वणा महात्मा गांधी सफाखाना परिसर रो जायजो लियो। इंद्र पाछे श्री खींवसर मेडिकल कॉलेज री प्रिंसिपल और चिकित्सा अहलकारा रे साथ है बैठक करी। मीडिया सु बणतल माए चिकित्सा मंत्री कहो कि जयपुर सु आई टीम भीलवाड़ा माए हुई प्रसूतावारी मौत रे कारणारी जांच शुरू कर दी है। वणा कहो कि सरकार मात्र शिशु स्वास्थ्य ने लिए गंभीर है।
4: हमारी जयपुर से एक टीम आई, उन्होंने जांच करी, लेकिन हमारे सीनियर लोग ऑल राजस्थान के आए, अब मैं भी आया यहाँ पर। हमने सब चीजों की जांच की है और मैंने कुछ दस्तावेज की मांग करी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और हमने मंगाया है, और बांसवाड़ा में आज जा रहा हूँ।
0: चिकित्सा मंत्री इंद्र पाछे बांसवाड़ा खातिर रवाना हो गया। ध्यान जोग है कि हाल ही माए बांसवाड़ा माए न्यारा न्यारा कारणा सो कुछ एक प्रसूतावारी मौत हुई ही। स्थिति रो जायजो लेवन खातिर चिकित्सा मंत्री सफाखाना

0: निरीक्षण करेला। राज्यपाल हरिभाउ वागड़े सू आज ऑस्ट्रेलिया रा उच्च स्तरीय राजनयिक पॉल मर्फी मुलाकात करी। इन चालता दोनों भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीच शिक्षा और वाणिज्यिक संबंधा ने बढ़ावो देवन माथे चर्चा करी। साथ ही राजस्थान माए उच्च शिक्षा, आदिवासी संस्कृति संरक्षण और कृषि माए नवाचारा माथे भी खास रूप से चर्चा करी जी। बैठक माथे और ब्यूरो न्यूज डेस्क सु।
1: राज्यपाल श्री बागड़े री पहल माथे राजनयिक श्री मर्फी राजस्थान रा विश्वविद्यालय रे साथे ऑस्ट्रेलिया रा उच्च शैक्षिक कार्यक्रम रे एक्सचेंज री संभावनावा माथे काम करने पर सहमति जताई है। आवण वाला दिना माए राजस्थान रा विश्वविद्यालय रा कुलगुरु और ऑस्ट्रेलिया रा शिक्षाविदा तथा कुलपतिया रे साथे वीसी रे जरिए बढ़तर और चर्चा वेली। इनरे अलावा कम पानी और सूखे वातावरण माए कृषि सुजुड़ी पद्धति रे बारा माए भी राजस्थान ने फायदो दियो जावेला। बैठक में राजस्थान री आदिवासी धरोहर संरक्षण माथे भी खास चर्चा करी जी। न्यूज डेस्क सु सलेहा गाजी।
0: प्रदेश राजकुला माए डिजिटल लर्निंग लैब री स्थापना करी जावेली। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए आज जानकारी दी। मुख्य सचिव कहो कि इन सो पढ़े सरिया ने अध्ययन माए सुविधा मिल सकेला। मुख्य सचिव पीएम श्री विद्यालय रा संस्था प्रधानारी राज्य स्तरीय वेबिनार माए बोल रिया हा। वणा कहो कि आ लैब सू पढ़ी सरिया ने अध्ययन माए सहायता मिलेली। वणा हर पीएम श्री स्कूल माए सुझाव पेटिका लगाने और सफलतारी कहानियां साझा करने री बात कही। वेबिनार पाछे मीडिया सू बणतल माए मुख्य सचिव कहो कि न्यारा न्यारा स्कूलां रा नवाचारा और सर्वोत्तम नीतियां ने दूजा स्कूलां माए भी लागू करियो जावेला।
2: राजस्थान में जो पीएम श्री स्कूल्स के माध्यम से जो एजुकेशन मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, इनमें कई नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस आज हमारे सामने आए हैं। ये हम भारत सरकार में सामने भी प्रस्तुत करेंगे और इसी क्रम में अन्य स्कूल्स को भी डेवलप करने के लिए सारे प्रयास। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसको हम लोग इसी क्रम में और भी वेबिनार सारे आयोजित करेंगे, टॉप परफॉर्मर्स को राज्य के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वो अपना चैलेंजेस और सक्सेसेस पूरा राज्य में बाकी सब लोग सुन के सीख सके।
0: प्रदेश राज सगला 63,000 आंगनबाड़ी केंद्र माथे आज पीएएम बैठक राखी जी। महिला और बाल विकास महकमारी कानीसू आ बैठक हर महीने री मावस ने राखी जावे है। समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS रा निदेशक वासुदेव मालावत राजधानी जयपुर में परियोजना जयपुर 2 रा मालवीय नगर सेक्टर 10 माए आंगनबाड़ी केंद्र माथे राखी जी पीएएम मीटिंग रोज जाए जो करियो। वणा आंगनबाड़ी केंद्र माथे मौजूद कार्यकर्ताओं और अभिभावकों सू टावनारी गतिविधियां व्यवहार परिवर्तन और पोषण सू जुड़ी जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिया। केंद्र सरकार सोशल मीडिया माथे वायरल हो रिया उन वीडियो रो खंडन करियो है जिन माए दावो करियो गयो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड रा ऑकलैंड माए एक कार्यक्रम रे चालता कयो हो कि भारत दुनिया रो दूजो सबसे बड़ो गोमांस उत्पादक देश है। पीआईबी री तथ्य जांच इकाई कयो है कि ओ दावो फर्जी है और प्रधानमंत्री एड़ो कोई बयान नहीं दियो है। रेलवे माए भूमि अधिग्रहण री प्रक्रिया रे प्रबंधन खातिर रेल भूमि पोर्टल लॉन्च करियो जावेला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नवी दिल्ली माए मीडिया ने आ जानकारी दी। वणा बतायो कि अब कंटेनरा माए खाद ले जाई जा सकेला। बिजली संयंत्र सो पैदा होवन वाली फ्लाइश एरस ने कंटेनरा माए भेजो जावेला। इन सो पर्यावरण प्रदूषण री भी रोकथाम होवेली। श्री वैष्णव कंटेनर नीति रे तहत एकीकृत लाइसेंस प्रणाली री भी घोषणा करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई ने आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम में आपरा विचार साझा करेला। इन मासिक रेडियो कार्यक्रम री 136वीं कड़ी वैली। इन खातिर श्रोता आपरा सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 माथे भेज सके है। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम रे मार्फत भी विचार भेजा जा सके है। है सुझाव 24 जुलाई तक मंजूर करया जावेला। और आखिर माए खास खबर एक कर फेरू सुनो। राजस्थान विधानसभा गठन रा 75 बरस रे मौके माथे काले सु अमृत महोत्सव री शुरुआत। साल भर कई खास कार्यक्रम रो आयोजन वेला। राज्य माए शादी धार्मिक आयोजना और सार्वजनिक कार्यक्रम माए अबे केवल वैध लाइसेंस धारी हलवाई और कैटरर ही सेवावां दे सकेला। प्रदेश भर री सगली गर्भवती महिलावां रे स्वास्थ्य री सघन स्क्रीनिंग खातिर काले सु खास अभियान चलायो जावेला। हर प्रदेश का सगला 63,000 आंगनबाड़ी केंद्र माथे भी अभिभावक कार्यकर्ता बैठक में टावरा रे स्वास्थ्य और शिक्षा माथे चर्चा। इन रे साथ ही समाचार और बुलेटिन पूरो हुयो।

0: नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी 106.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत।
6: किसान वाणी सुनने सबका भाई अभिनेता बैंजा घना घना राम राम। तो भाई आप हमेशा आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है आप किसानों नई नई योजनाओं के बारे में या जो नया अभियान चल रहा है वो बारे में जानते हैं, तो हमारा जो आप अभियान चल रहे वो है वर्षा जल संरक्षण अभियान। तो ईर में जो है आप अगर बात करो तो आप मतलब जो भारत सरकार योजना चला रही है अभियान मुख्य उद्देश्य यही है कि ककर आप जो आप वर्षा रो जो जल है उन आप संचयन करना है, उन्हें संरक्षित रखना है। तो वो वास्ते जो है अगर आप बात कर दे तो जो आप जो छत है या खुला स्थान है वो मत जो गल नाली बारिश है उन आप पूरे पानी ना आप बड़े जो टैंक है या गड्ढा है उन आप इकट्ठा कर सको। और साथ ही साथ जो है आप अगर भूजल आप बात करो तो आप बोरवेल है या गड्ढा है उसके माध्यम से भी आप जो आप वर्षा रो पानी है वो आप जमीन जमीन अंदर उगा सकते। और साथ साथ जो है अगर आप बात करो तो ये अभियान वास्ते जो है एक मूल मंत्र है कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जब बारिश हो रही है या जब भी हो रही है तो अपन वो पानी नो बचावना है। और ये अभियान से जो है वर्षा जल संचयन जो है वो भूजल पुनर्भरण या फिर पारंपरिक जल स्रोत और जो है जीर्णोद्वार में केंद्रित है। तो आपनो भी जो है ये अभियान रो हिस्सों बनना है जितो हो सके आप वर्षा जल रो संरक्षित रखना है। अलवर जो है वो आप ऐतिहासिक जो जोहड़ यानी जोहड़ होना कहीं जो मिट्टी का छोटा छोटा बांध हुई तो जोहड़ और जल संरक्षण प्रयोग और वास्ते पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगर आप भी आप जो घर में खेत में या आप कोई भी इलाके में अगर वर्षा जो जल संचयन योजना बनाओ तो जो आप राजस्थान सरकार है और जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग यह द्वारा समय समय में विभिन्न योजनाएं चलावी तो आपन वो योजनाओं की जानकारी ले रही है और वो से जो आप अगर कोई भी सहायता वो मिल रही है वो तो आपन को सहायता मिल रही है तो आप वो भी प्राप्त करके जो है वर्षा जल जल संरक्षण आप जो है संरक्षित कर सकते। तो ऐसा तो बात रहती आज जो अभियान चल रही है वे रही आप बात करो आप थारी शोभा यानी खेजड़ी रही थारी शोभा जो खेजड़ी है वो शुष्क बागवानी जो है संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित है और यह खेजड़ी जो है एक उन्नत और संकर किस्म है जिसका नाम आप थारी शोभा को है। यह जो किस्म है यह बिना कांटे वाली हुई और इधर जो कर रहे हो छोटो या फिर और इधर जो कांटा कम हो या कांटा नहीं होने से जो है आप जो रोफल है जिसका आप सांगड़ी पाए उन आप बेद आसानी से तोड़ सकते। और यह रेगिस्तानी क्षेत्र वास्ते वरदान है क्योंकि मैं 3 से 4 साल में मोए जो अच्छी पैदावार होने लग जा रही। थारी शोभा जो खेजड़ी है विशेषता है कि यह सामान्य खेजड़ी की तरह विशाल को नहीं है बल्कि छोटी और झाड़ी रूप में बड़ी और ये कौटा को नहीं है तो ये देखभाल और जो तुड़ाई है वो आसानी से हो जाएगी। यह कम नमी और क्षारी भूमि में भी आसानी से बनती है। ये जो 5-7 साल रहे जो पौधा है वो 7 से 10 किलोग्राम तक अपन सामग्री प्राप्त हो जाएगी। और इधर जो हरी और सूखी सामग्री है जो सब्जी के वास्ते और इधर जो पत्तियाँ है वो जितना लूँ का वो पशुओं वास्ते और जो किसानों और शानदार जो है आमदनी हुई क्योंकि अगर आप बात करो तो देखो थारी शोभा जो खेजड़ी है वो देखी जावे तो भाई सूखी अगर आपको सब्जी बनाओ तो इंसानों के हिसाब से पत्तियों जो पशुओं के हिसाब से काम आएगी और साथ ही साथ ये लकड़ी है वो जलाने का काम आएगी तो केस न केस है आप और किसान भाइयों और आयर वास्ते बहुत ही अच्छी है। खेजड़ी जो जड़ों हुई वो गहरी हुई जो भूमि ने उपजाऊ बनाई और जो मृदा क्षरण है उन्हें रोके और पर्यावरण ने संतुलित रखी। बात तो आप और भी करता हूँ पहले आप सुनते राजस्थानी लोग ही पक्षी बस चर्चा रखता जारी।

हे घर घर हुए पूजा तारी गाँव गाँव चसगावे जी, घर घर हुए पूजा तारी गाँव गाँव चसगावे जी, रूणे चेरा राम देव जी सुतो है तो आव जी, रूणे चेरा राम देव जी सुतो है तो आव जी, हे राम सापी तारी, हे राम सापीर तारी, मेरी मैं जोत जगावा मंदिरा राजत फल पावा, हे रूणे चेरा दरिया रच माल जीरा कौरा माता, मेरा तेरा लाल मारो हेलो सुनो जीरा मा पीर जी।

आजे बोले तीतर मोर जी केरी केरी झाड़ी आजे बोले तीतर मोर तीन आया जातरी रे चो थोड़ो रे चोर जी तीन आया जातरी रे चो थोड़ो रे चोर जी हे राम शबीर थारी हे राम शबीर थारी मेरी मैं जोत जगावा मन राजा चित फल पावा।

अरे दास करे रे दस गयो कालो नाग जी दास करे अरे दास करे दस गयो कालो नाग जी रूणे चेरा शाम धनी सुतो है तो आव जी रूणे चेरा शाम धनी सुतो है तो आव जी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

किसान भाई अभी किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए।

करते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद राशिद खां का गायन ख्याल मधुवंती पर आधारित।

मैं तो तन मन धन सब मारु रे, मैं तो तन मन धन सब मारु रे, उन जो मोदी लगन लागे रे, उन जो

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे उस्ताद राशिद खां का गायन ख्याल था मधुवंती। यह है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हेमलता के स्वर में। फिल्म है अखियों के झरोकों से।

प्यार से कुछ भी गहरा

अभी आपने सुना फिल्म क्रांति का ये गीत नितिन मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आइए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है पाकीज़ा, स्वर है लता मंगेशकर।

महबूब की मेहंदी। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आपने सुना, इस फिल्म का गीत स्वर दिया था लता मंगेशकर ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण उपलब्ध है FM बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 8:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आबिदा परवीन के स्वर में गाई ये नज़्म।

मोर आंगन होरी खेलन आयो हा जाने जामुदीन चतुर खिलाड़ी हा जाने जामुदीन चतुर खिलाड़ी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुनी ये नज्म आबिदा परवीन के स्वर में। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से

0: फैल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्ते नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों यानी लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और ये फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: This is also one of the most ambitious.
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
5: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
6: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
7: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thoughts shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility.

दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू के स्वर में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मुल्तान खां व पार्टी के स्वर में गाए कुछ राजस्थानी लोकगीत।

Yeah,

ಓ ರಕ್ಷಣಾ ಮಿಂತಾ ಮಾಡು

I'm not

I'm not going to be able to do that.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे मुल्तान खां व पार्टी के स्वर में गाए राजस्थानी लोकगीत। प्रस्तुत है कार्यक्रम शामे गजल। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जगजीत सिंह व चित्रा सिंह के स्वर में गाई गजलें।

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम शामे गजल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में गाई गजलें। आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको आज सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में गाए कुछ युगल गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में अभी आपने सुना गीत फिल्म की मेरे हमसफर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं गीत जिसे हम लेकर आए हैं फिल्म मिलन से।

पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई मेरे दिल की जलन। पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई।

रोटी कपड़ा और मकान। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी कुछ ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्ते नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranveer Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth-level officers or BLOs will now visit house-to-house in both the states till the 24th of this month, which was earlier scheduled till the 14th of July. It added that the draft electoral roll will be published on the 31st of this month. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said, "Bharat Tex is the vision of the Prime Minister." He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textiles sector. The Enforcement Directorate, ED, has arrested a private software and fintech firm chairman in connection with the alleged Mahadev online betting app Linked Money Laundering case.